mulțumită, drumadele șobinii. Suna sinii, sumătura mașinii.

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि तदनुसार 2 जून सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है और आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और सुजाता भट्टाचार्य की आवाज़ में। फिल्म का नाम है एतबार।

0: flies, it's like a magic way.
1: दे ताली। इस फिल्म में आप सुन रहे थे विशाल शेखर और राजा हसन को। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू को, फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर। अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म का नाम है दोस्ती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम था अर्जुन पंडित। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
3: जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
3: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नैना जैन, दीपक, मयंक मूड़त और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
3: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
3: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
3: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
3: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
3: बिल्कुल,
1: लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी,
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
3: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
1: बताइए।
3: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
3: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
3: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
3: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
3: दूसरी रोचक बात यह है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
3: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
3: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
3: जी।
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
3: जी जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि
1: जी।
3: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
3: जी,
1: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
3: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
3: जी।
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
3: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
3: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
3: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
4: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
5: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
4: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
6: De Marseille, dans le sud de la

लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।

0: चलो
1: वो देना था। अरे
2: भेड़िया
3: लुई पास्टर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो
0: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
3: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्टर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
3: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्टर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्टर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
3: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्टर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
3: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पास्टर को बुलाया और कहा,
6: लुई पास्टर
7: सर,
6: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
7: कहिए सर।
6: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
7: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
6: ठीक है।
4: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पास्टर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पास्टर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पास्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
4: पास्टर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पास्टर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी

0: और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा इंजेक्शन लगा दूँ।
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
5: देखिए आप,
6: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
6: मेरा
5: अच्छा,
6: बेटा।
5: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर

0: के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्टर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्टर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्टर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्टर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्टर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1800

0: इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे उमंग कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने आज शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में इन 5 के नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई ने बताया कि ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के पास आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान में भागीदारी बढ़ रही है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत मई महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो फरवरी 2024 से योजना के शुरू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। राजस्थान डिस्कॉम के सहयोग से चल रही योजना में बीते महीने सबसे अधिक 9,316 सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम में लगाए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2,17,000 से अधिक रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 सालों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका

0: प्रयास सिद्धांत के साथ काम कर रही मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। सरकार के सतत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जोड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 3-4 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ दिन और बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। विभाग ने आज 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और आंधी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 में हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पनिहारी।

0: महिला रो शौक भी है, गुण भी है और होना भी चाहिए। थो अगर सुनी हो तो अपने अगला भी कहता के सजी सवरी फुटरी केसरिया कपड़ा पेरोड़ी लुगाई स्वामी आवे नी तो साक्षात जगतम्बा रा सुगन गुणी जी।
1: अच्छा,
0: तो अगर सुगन आपे कोई स्वागन स्त्री रा और एडी मतलब यहाँ होगा नी पैरी उड़ी सुंदर गहना कपड़ा पेरोड़ी हुए और बढ़िया तैयार होड़ी कोई महिला आवे नी अपन स्वामी घर से निकलते तो समझो वो काम तो अपन निश्चित रूप से हो से। और ये जगह जब कोई आलस में जेरो बैठो खावे मोड़ा उठे चोटियों करना पता ही नहीं न कोई आज हम जो लू रो समय है गर्मी रो समय ये समय में अपन कई तरीके से रहना चाहिए। सर्दी आई है तो सर्दी में अपन कई तरीके से रहना चाहिए। ऐ सब जो कोई छोटी छोटी बात है नहीं तो अगर जो ध्यान में नहीं है नी तो पछे वो उनका नहीं सुगनारी बात सही को पते सोमो आगे समय जीट बिगड़ोड़ा खुले आए सोमो आए ये तो कोई सुगन उल्टे बिगड़ जाए। तो कहना मतलब है कि ये गर्मी सु अपन सबसे पहले तो बचाओ लू सु होना चाहिए पर आज अपे तो फुटरा पे मथे उतर गया। तो देखो सबसे पहली बात है कि घर रे महीना अपरा इतना उबटन है
1: जी
0: अगर आप प्रयोग करो नहीं वास्तव में तो थोड़ी सी मेहनत सु अपरे चेहरे में एड़ी रौनक लागे और वो रौनक ता उम्र थे। देखो अना अपरे गाँव रे महीना 60-70 साल जो अपने नानी और दादी उम्र चेहरों में झुरियो को
1: जी
0: चेहरों मोर चमके क्यों चमके के वो एक तो एक खोटी चीजों का ही खाती बोल गाँव रो एकदम शुद्ध खान पान घर रो खाटो भले सिंपल खाटो रोटी खाया लेकिन उरे में अड़ी जिको जिको चीज अपन नुकसान करे वो चीज खाई गई। सबसे पहली बात तो नीतू बहन ए है कि जिको आप अच्छी पौष्टिक चीज पेट में खासो नहीं तो वो अपर चेहरे मत है जरूर दिख से
1: जी।
0: और उरे अलावा जो उपटन हुई तो उपटन भी आपकी जगह काम करी जे।
1: देखो सभा बहन था जो बात करी कि अगले जमाने में उम्र खान पान रे हिसाब से उम्र मतलब त्वचा होती हाँ भी था कहो कि देखने ना अपने मिल से कारण था बताए दियो कि भाई उम्र खान पान तो वो शुद्ध तो
0: हाँ।
1: हवा पानी भी शुद्ध थी और बीजो ए है कि हाणोरी टाइम में ना जो आप भले देख लो नहीं कि कोई पेय पदार्थ है पियो ही उर में की है हानिकारक प्रिजर्वेटिव हुई तो हुई और साथ में जो शक्कर की मात्रा आवे नी वो बहुत ज्यादा आवे और शक्कर नी हमेशा अगर ज्यादा आवे नी शक्कर नमक तो अपर शरीर ना नुकसान पहुंचावे साथ में जो अपर त्वचा है नी वो 10 साल और बूढ़ी हो जावे री
0: मतलब उसमें सड़ पड़ना
1: हाँ सड़ पड़ना शुरू हुई। तो ये रे कारण ए जो पैक्ड चीजों है वो तो खाने नहीं चाहिए। बाकी रहो अपर खान पान तो देखो जो तकनीक रो विकास हो जो देखो अपर खान पान में भी चेंजेस आया कि आप पहले जो घर बनेड़ा चीज खाता नहीं और वो चीज आप बाहर से मंगवाई के आना खाओ लेकिन कोशिश है करनी कि वो जो चीज बाहर आ रहा नहीं आप नहीं खाए के ओड़े चीजों घर में बनाए के खावा नहीं तो अपर शरीर में नुकसान को नहीं पहुंचे और साथ में ना जो घर बनेड़ो से नहीं शुद्ध और बढ़िया पौष्टिक आहार तो अपर खावण में ना भी अच्छो रेस है और अपने स्वास्थ्य ने नुकसान भी
0: देखो नहीं तो मैंने कति लाख रुपये की बात बताई एक तो बात सुनने में छोटी सी लगे और अगर हम आप चार जने बैठे तो ये बात कैसे ऐ तो बात हमें असंग न उठाए पर था उड़ो एक अलग बात है और वो चीज ना करनो
1: करनो अलग
0: देखो वो में जमी आसमान नो फर्क आ जाए। सबसे पहली बात तो अपन सुनने मिले कि घर ही चीज बनोड़ी सबर गति की पहली लाइन
1: जी।
0: तो सबर गति में देखो सीधो सीध फायदो हो गयो भाई जिको चीज अपे बाजार से 100 रुपये में खरीद के लाओ है वो चीज अपे अगर घरे बनाओ तो अपन 50 रुपये में पड़ जाओ और बने भी गणी में मेरी डबल अपे घरे बन जाओ है ये तो यो पहलो फायदो हो गयो घर में आर्थिक रूप से अगर अपे देखो नहीं एक समझदार स्त्री समझदार महिला जो आप घर ना एकदम तरीके से चला भी वो एक काम जरूर करे आज भी करे बात को नहीं कि सब जना बाजार से खरीदे ना बाजार से सब जना को नहीं खरीदे और विशेष रूप से नीतु मैं ना था अगर तो गौर करी हो देखे हुए तो आज रे हमें हणो रे ये युग में हूँ देखो 2-4 साल री बात करो पिछला साल छोड़ दो ये मैं वापस सुधार की तरफ आप अग्रसर हो गया
1: पहले रे जमाने में ना जा रहे हो
0: तो पहली बात तो है कि आप आर्थिक रूप से बचत हो गई अपन देवनी चीज बन गई घर में बीजो उनमें की वही शुद्धता एकदम शुद्धता अपन खुद ना वो चीज खावनी है घर में ना और घर भातियों ने खुआनी है नहीं तो बाजार वाले यो लग सके आप तो बनाए रख दो जो ले जावे खास नुकसान हुए तो वो नॉन फायदा हुए तो मोरे दिमाग में तो देखो ये बात रहे पर अपने खुद जत घरे

0: कोई चीज बना सो तो घर में मेम्बर ने खुआ सो, सीधी सी बात है। तो एकदम शुद्धता से बना सो।
1: जी
0: अच्छा शुद्धता वे में कितनी है अपन उठा हुए, एकदम 100 में 100 पैसा शुद्ध चीज बनोड़ी वे। और कदे कदे अगर सो देखी हुए तो गलती से कोई चीज खुली रह जावे या कोई मच्छर इस बढ़ जावे या कदे कोई चीज रहे, तो एक जो को महिला है गरीब ना अगर कोई एड़ी बात देवन में तो टावर नोड़ी चीज हरगिज खुद को नहीं खाना
1: जी।
0: और भले बे पैसा नुकसान सहन कर ले से, लेकिन अगर कोई चीज में थोड़ी ऊंच नीच हो जावे या थोड़ी सी महक भी आ जावे नहीं, तो झटो टाबरो ने को खुआवे नहीं
1: जी
0: ना है नुकसान कर दे से। तो ये वास्ते हमेशा पौष्टिक चीज घर में बने। एक बात और भी है कि हम जो आप कहो नहीं भाई आप बे पैसा बचत रही सोचो, तो कदे कदे ए वे कि कोई चीज बाजार में सस्ती मिल जावे अपन, और वही चीज आप घरे बनावनी चाहूँ तो उगरा बेवना पैसा लग जावे
1: जी।
0: हमें उए में फर्क की भी नहीं, तो बहन के उए में जो आप उरी क्वालिटी देखो है नहीं, जो बाजार में अपन चीज मिले उरी हमें जो चावलों ने देख लो
1: जी,
0: चावल 25 रुपये किलो भी है, चावल 50 रुपये किलो भी है, चावल 100 रुपये किलो भी है, चावल 200 रुपये किलो भी है। तो हमें आप घर बगा अगर कम में ले सो तो 200 वाला ले सो नहीं
1: जी,
0: 25 वाला तो कौन लो
1: वो नहीं लो।
0: तो ये वास्ते छोटी सी बात है, पर घरे अगर जो चीज हम जो घी ना देख लो, बाजार में घी में हो सके आधो तेल ही मिला ले, घी में हो सके आलू उबाल के मिक्स कर ले, बस देखो कहीं ठाकुन पड़े। और अगर आप घर में कोई घी चीज बना सो तो स्वामी दिखती बात है कि एकदम प्योर घी प्योर घी ले, तो उ में अगर 4 पैसा आप और भत्ता भी लगे नहीं तो एक गृहिणी ना वो चीज दुख है
1: जी।
0: हूँ तो नहीं तो मैंने मानो के एक सफल गृहिणी ना मानो के वो आपने घर पका अगर 10 रुपया भत्ता खर्ची जावे तो परवाह नहीं, कोई बात नहीं। और जो हमें थोड़ो मौज मस्ती वालो स्वभाव भी वही कोई कोई बच्चा रो तो ठीक है, आज हाँ जो छुट्टियां हैं घूमन फिरन जाओ खाओ पियो वो भी थोड़े समय रे लिए बढ़िया है, लेकिन लंबे समय रे बगा आगे रे बगा बच्चों रे अगले भविष्य रे बगा इो सेंगो बातों रे बगा सिर्फ और सिर्फ अपने पेट रे में अच्छी पौष्टिक आहार जितनी तक नहीं जासे, जिते सियाड़े उन्नाड़े रे आप भजन करो नहीं हमें सियाड़ो आयो हमें उन्नाड़ो आयो, तो ये सब चीजा आते रह से और अपने मत हावी
1: होते रह से
0: तो इो ना हावी अपे नहीं हो रे बगा तावड़ो होना तपेड़ो जाए आपकी बढ़िया चीज बनावे और खावे। और पासाड़ देखो हूँ तो बातों करती जाऊँ तो मना नहीं तो बहन ठा भी कौन पड़े, पर थोनो ध्यान है कि अपनी पणियारी में ढोल नहीं बाजे तो पणियारी शुरू को नहीं बसे, बहनों ने लग से कि आज तो भिड़ते उपदेश शुरू पर करिया ना गीत रहा पता ही कौन
1: ना ना सॉरी बात हूँ समझ गई कि गीत लगाना है तो सुबह में ना तो बढ़िया जोड़ो गीत सुना थोड़ा जी सोरो जैसा रहे जो गर्मी गर्मी करो नहीं इन्हें भूल जा सो।
0: देखो

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो सुबह बहन देखो गीत भी सुन लियो और जरूरी संदेश भी सुन लिया, क्योंकि संदेश तो अपन ध्यान पड़े की चीज अपर वास्ते जरूरी है, सरकार अपर वास्ते की चीजों बनाई है ताकि अपन पूरी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो जो जानकारी की बात करें तो अपन हाँ थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये भीषण गर्मी रे महीनो आप बचाव कौकर करो और जो महिलाओं है वो आप घर न की प्रकार सुचारू रूप से चलाए सके। तो हमें बात आवे कि भाई देखो महिलाओं है आप गृहणी हो आप तो देखो आप घर न व्यवस्थित भी रखो है हर तरीके से सब चीज परफेक्ट बढ़ाओ ने कोशिश, लेकिन जो ये बात न वो काम काज जो महिलाओं है नी जो भाई घर न भी संभाली साथ में ना आप कार्यस्थल माथे भी काम कर रही तो उन बीच में न वो घर
3: और समस्या
2: वो घर परिवार में न सामंजस्य बनाए रखे और जो आप काम करने स्थान है वो भी आप रही पूरी पूरी भागीदारी निभावे
3: पूरा काम सबना चाहिए।
2: हाँ तो देखो कुछ ना कुछ समस्याओं तो आते ही जो से वो
3: ना कुछ ना ज्यादा समस्याओं आवे आती जो से
2: तो वो बारे में थोड़ी की राय है कि भाई अप मतलब कामकाजी महिलाओं की समस्याओं तो देखो थोड़ी बहुत मना जानकारी है। हाँ हालांकि हूँ कामकाजी महिला हूँ नहीं लेकिन मैं देखी हूँ कि जब कामकाजी महिलाओं भी नहीं तो उम्र माथे दोहरी मार भी एक घर परिवार ना संबंध मतलब पूरा सार संभाल करनी और साथ में आप जो कार्यस्थल है
3: ऑफिस हो चाहे दुकान हो चाहे कोई भी काम बिजनेस हो कोई भी हो सही
2: तो उन्हें आप घर परिवार की भी देखभाल करनी और ऑफिस में भी काम करना तो वे में की हुई उन्हें खानों भी बनाना पड़ी कपड़ा भी धोना पर जो घरेलू काम काज है वो तो जरूरी है ही और साथ में ना जब भले वो टीचर हुए चाहे कोई बैंक में नौकरी करती हुए चाहे वो खुदरी दुकान हुए तो ये में ना ही घने समस्या हुई तो वो समस्याओं रो समाधान को कर हुए ये बारे में थोड़ी जानकारी अपन बहनों ने बता दो
3: भाई। देखो नहीं तो बहन एक तो थो बात एड़ी गुड रहस्य जी कहना कहे नी कि ए तो बात यो तो देखे तो सब न ठाए लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो नी वास्तव में जो काम काजी महिलाओं है जो अपनी बहनों है जो घर में भी काम करे और ऑफिसों में भी काम करे तो वास्तव में देखियो जावे नी तो वो दोहरी मार जो थो कहो नी तो दोहरी मार से गुजरे जाए पर प्रकृति एड़ी एक कला महिलाओं में गति है भगवान भी आप कह सको ईश्वर है जो महिलाओं ने उ तरीके से उमर जो संरचना करी है कि वो जिके भी संचय में डालो ना वो संचय में फिट बैठ जाए
2: जी ए था एकदम सही बात बताई
3: मैंने
2: क्योंकि ये मैं संचय में थे भी डालो डालो थे घर परिवार ने भी संभालो आप कार्यस्थल ने भी संभालो और साथ में ना जब आप बहनों से जब थे बातचीत करो नी तो वो भी एक थोर में ना बड़ी खूबी है क्योंकि भगवान थाना अलग ही संरचना थोड़ी घड़ी है।
3: ए देखो प्रकृति रो नियम है एक महिला एक पुरुष वर्ग एको नहीं हालांकि कोई कोई करता उसे पर बहुत कम रेयर पर महिला एक भले पढ़ी लिखी है तो चार चांद लगे पर अगर जी बिना पढ़ी लिखी भी महिला है तो भी वो अपने परिवार नो घर नो और आवन जावन आलो मेहमानों नो और घर में अगर हमें तो आज रही जो बच्चियों नो पढ़ावनो करनो वो भी अगर महिला अनपढ़ भी है फिर भी वो आज रही जो विचारधारा रे मथे एकदम पूरी परफेक्ट उतर रही है तो ए बात एक तो खुशी रही है। ये मैं सबसे पहली बात तो है कि जागरूकता आ गई है अपर हर क्षेत्र में तो वे सु भी कामकाजी महिलाओं दिन ब दिन बढ़ रही है। हमें एक बात और हूं थोड़ा बताई इसके जो कामकाजी महिला है कि भाई मनो तो 10 बजे ऑफिस जाना है तो वे रो एक तो शरीर परफेक्ट हो से एक बार समय समयबद्ध कौन

0: सहूलो
1: जी उड़िया को नहीं के चाय पी तो मैं आप ओटे में आधो घंटो बैठा आप बंसल कर ली
2: उन्हें टाइम को मिले समय अनुसार काम कर से सही बात है।
1: आप रे 10 बजे अगर वो ना जाओ कदे कदे 7 बजे जो स्कूल में 7 बजे टाइम हुए तो वो महिलाओं 5 बजे उठे 4:30-5 बजे उठ जाए खड़ी हो जाए और आप रे घर रो एकदम सुचारू तरीके से काम करके आप रो टिफिन भी बनावे बच्चों रा टिफिन भी बनावे मतलब काम तो घरे जो घरे गृहिणी है वो भी करे पर जो काम काजी या जो नौकरी पैसा महिलाओं है वो की एक समय रो बड़ी पाबंद हुई वो समय री कीमत ठावे समय अगर उम्र बगा 5 मिनट भी बहुत बड़ी बात हुई
2: जी
1: और अगर जो खाली अभी बैठा हूं तो उम्र में आधा घंटा ही निकल जावे तो कोई फर्क कौन पड़े तो कामकाजी महिलाओं और सबसे बड़ी बात और पहली बात है कि वो समय रे अनुसार चले समय नो आप रे भेलो लेके भई और समय मत सब काम करे जे और पछे के कदे कदे आयो जी के कदे ग्रस्त में बैठा हो घर में बूढ़ा माइत भी हुई बच्चा भी हुई कदे लेट भी हो जावे तो आगे कोई अवसर है ए होगी समस्या अच्छा अपन टाइम सर ऑफिस पुगनो है घर में माइत कोई बीमार है अपन निकल कौन सको ए हो गई समस्या
2: जी
1: या कदे खुद रो अस्वस्थ हो जावे शरीर ए हो गई समस्या मतलब ए छोटी छोटी जो समस्या है उन्होंने भी एक तरीके से हैंडल करके महिलाओं ने लेके पेवनो पड़े तो ये में की भाई अपन तो बहनों ने एक ऐसी बात कहनी चाहे कि कदे कोई ऐडी कंडीशन हो जावे नहीं तो जो आप ये है वाणी ये ना एकदम मधुर रखे म्याली तो ऐसी सलाह है चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो समाज हो चाहे वो पर पड़ोसी क्यों नहीं हो हमें देखो छोटी सी उदाहरण बताऊं कि अपरो पड़ोसियों से इतो बढ़िया लगाव हुए इतो बढ़िया स्नेह हुए कि हर एक पड़ोसी नहीं लगे कि 2 मिनट उबे नहीं तो बात करो तो सीरी आवे
2: जी
1: अच्छी बात कोई बता से भाई नौकरी वाली है बाहर जावे काम करावे घरे भी काम करे तो उन्हें यो लग सके ना तो अगर आप पड़ोसियों से अच्छो व्यवहार रखो तो कदे एडी कंडीशन हुए कि टाबर घरे अकेला है या माए तो ठीक को दवाई देनी है बस खाली दवाई देनी है मन ऑफिस जाओ तो आप ये काम उन्होंने भुला सको कह देख हूँ जाओ तू दवाई दे दे या यो चाय बनाए पाए दे तो वो पड़ोसी कदे मना कौन करे जी कदे मना कौन करे रही बात ऑफिस री ऑफिस में भी हमेशा आप नरमाई स्विच चल सो तो कदे भी अफसर एक महिला अगर कोई वर्कर है महिला काम काजी कोई ऑफिस में काम करे बैंक हो या कोई भी हो तो अफसर भी इतना तो देखो समझे कि ना जो कोई एक महिला है वो घर से काम करके आवे तो 5 मिनट ऊंचा नीचा हो भी सके नहीं होना चाहिए कदे सी अगर हो तो वो भी उन्हें लेके अगर अपनी बोली में मिठास है तो हमें एक तो ओखण थोर सुनो चोरी ऊपर सीना जोरी
2: जी
1: तो अगर जे चोरी सीना जोरी वाली बात रखो नहीं तो अपने हर जगह तकलीफ सौम्य सौम्य दिख से अपने तकलीफ घर हो चाहे बाहर हो सब जगह तकलीफ दिख से तो अपनी बहनों ने तो भाई ऐसी बात कहूँ भाई कम तो देखो आजकल रे युग में हर स्त्री हर बच्ची है चाहे कहना हूँ कुछ न कुछ करो
2: जी
1: तो कुछ न कुछ करण रे साथ में वो ना एक तो समय और एक आपरी वाणी बेहो मथे अगर बढ़िया चले तो जो को एवरेस्ट री ऊंचाइयों तक भी महिला आराम से पहुंच सके
2: जी
1: है नहीं तो इर वास्ते कोई भी समस्या इतनी बड़ी को नहीं जिते रोपी समाधान नहीं कर सकते थोड़ो सी एकदम ठंडे दिमाग से सोचा नहीं तो 2 मिनट में हर चीज का समाधान निकल जावे और थे नहीं तो बहन गौर करो झुंझलाट में अभी बैठा काया ओडा रिसो बड़े कोई सम चीज रोपे देखो के समाधान कर लो हो ही को क्योंकि खुद भी अड़ू जुड़ा रहसा तो कोई चीज ना को कर सरू जासो इर वास्ते हमेशा ठंडे दिमाग से सोचनो और ठंडे दिमाग से बैठ के बंतल करनी और पासाड़े फुटसो से संगीत सुनना
2: जी
1: तो हमें देखो थे की सुना रहे हो

ચુંદડી તારા જણી ચુંદડી.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मिस सीमा
3: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: तो सुबह बहन देखो बढ़िया जोड़ो गीत भी सुन लियो और संदेश भी सुनियो तो बात करो कि भाई देखो इतनी देर सुबह के दिया गृहणी यो कर सके गृहणी है कर सके सुगढ़ गृहणी तो वही नहीं वो आपरे घर परिवार तो चार चांद लगाए देवी। और एक बात है कि पहले जमाने में देखो अपर धोन आओ तो खेतों से और उन आप संभाल के रखता करता कितनी में मशक्कत करनी पड़ती कि भाई 12 महीने रो धोन है जिकन अपन संभाल रखने 12 महीने वो धोन न चलाऊ है। और आज रे टाइम में ना किए तो अपन धोन भिड़ो भिड़ो वापरो को नहीं
8: वापरे
7: महीने महीने 2 महीने रे वास्ते अपन घर में ना धोन लाए रखो भले दाल है चावल है गेहूं है वगैरह तो ए जो धोन है वो मन की कीड़ा बेगा लागे रहा चौमासो चले पड़े ना जो नमी रे कारण की कीड़ा जल्दी वो मीनो पड़ जावे रहा तो इो कीड़ो नो मतलब निजात अपना चाहिए तो उर वास्ते अपन की करना चाहिए ए भी एक समस्या हुई हर गृहिणी रे वास्ते। देखो नी मैं सुनियो कि भाई अखबार का टुकड़ा डाल दो अपन टीली हो माची से वो डाल दो या नीम रे पत्ता हुई नहीं सुकर के इले लट्टो पड़े को नहीं लेकिन ये सब चीजें डालने के बावजूद भी कद कुछ ना कुछ जीव पड़े ही रहो।
8: सही बात है देखो नहीं तू बहन तो बात कही नहीं कर 12 धोन अपर घरों में हो तो और आज भी हुई शहरों में कौन गांव में हुई जो खेत रा धोन हुई
7: जी जी
8: जो आप रे खेती है उम्र तो धोन देखो हुई जे तो वो धोन तो 12 वो रखी जे और हमें तो बेरा हो गया भाई पहले तो आप खाली बरसात मथे निर्भर था आप और किसान भाई के बरसात आती जदी खेत खड़ी था जदी बाजरी होती गेहूं होता चना होता मूंग जो कोई भी 12 धान हो तो वे ना संभाल के रखनो पड़तो और वे सु बधिक जो फसल होती वे ना बाजार में देता तो बाजार में जब फसल आती नहीं तो बहन तो जिके रहे हम जो सब किसान भाई भी कोनी कोई व्यापारी भी वर्ग भी है कोई नौकरी पैसा भी है तो वो लोग भी की करता को ताजो धान जो एकदम ताजो खेतों से आते जो तुरंत खरीद लेता 12 जो 8 बोरी 6 बोरी बाजरी खरीद ली गेहूं खरीद लिया तो घरों रे महीनों पहले घर कच्चा होता उसमें कणसारा बने बड़ा होता मिट्टी रहा कणसारा यानी कि थे मेरी आकृति हूँ थानू कड़ी बताऊँ के ढोलकी भी नहीं और जो अपर टाबर जो को बजा
7: जी जी
8: वो ढोलकी री आकृति रहा लुगाया खुद हारी दे के कणसारो बनाते बाकायदा उन्हें मथे सू तो खुलो रखता गुरु में टाबर मोह बढ़ सके पछे उन्हें मोह सुगार भी जो नीप नहीं पाए।

0: महीनों की करता सबसे पहले बोनी छिड़क देता।
1: अच्छा
0: बोनी मतलब जो आप चूल्हो जगावे ना गाँव में ना,
1: राख।
0: उरी राख, उरी राख है जो कणसारे महीने जो जो चुनाई करता है, जो राख जो को नीपता नहीं, तो वो मैं वो बोनी रो प्रयोग जरूर करता। तो वो बोनी सो नहीं तो मैंने एकदम सो सो सो पैसा। सही बात है कि धन रे महीने कदी हिली पड़ती कोई कोई गोलियों की जरूरत न, कोई नीम रे पत्तों की जरूरत न, कोई केरी जरूरत नहीं पड़ती। कणसारे महीना बाजरी भरी कहने देखी नहीं देखी, और उरे ठेठ नीचे जो हाँ अपर पौनी टंकी नीचे और फ्लोर या पे कॉकर रखो टूटी, जो उरे नीचे है जो को समझो या थोड़ो मोटो बागो रखता खड्डू।
1: अच्छा
0: उए सु जब धोन अपन निकालना होता तो डूजो निकालता, धोन बाहर आ जाता बे पीपा तीन पीपा निकाले पाछो डूजो लगा देता, धोन मो सुरक्षित पड़े रहते। तो हमें वो चीज तो कोनी, फिर भी कई घरों में आज री बहनों हमें पाछो सीख भी रही है। पछे जो मोटे मोटे कोठे आ गए लोहे रे, तो वो कोठियों रे मैंने जो था कहू नी के नीमरा पत्ता भी डाल सको, अखबार डाल सको, तिले आवे जो रोगन रे ए डाल सको। पर एक और बढ़िया चीज हूँ थोड़ा बताऊ के बाजारों में आवी एक गोले जो को धोन में राखन रे बगा हुई डब्बी आवे पारे रे टिकड़े के भी ना बाकी ओ राखन सु वास्तव में जीव कोन पड़े, गुण जो मूंग है मूंग में गुण फटाफट पड़ जावे। और जो मैं ये चौमासे में तो ते समझो अगर अपे महीनों दिन चीज नहीं सारा तो गुण तैयार है पड़ जावे। पर ओई जो अगर आप पारे री डब्बी ले आऊं बाजार से, एक तो सबसे पहली बात तो थोड़ी महंगी पड़े, और ओड़ो पारे रो पाउडर भी मिले
1: जी
0: ओज चीज वे गोली रे महीना वो पाउडर कम खाते उड़ो भाई बीजी सामग्री में घनी हुई। पर अगर आप बहनों घरे गोली बनावनी चाहो तो आराम से घरे बनाए के एक डब्बो भर गोलियां बनाए रख दे। हमें मूंगो में गद्दो अणजो जीरे री फसल आई है
1: जी,
0: जीरो अणजो आप बधिक आ गया तो जीरे में भी गद्दो, कोई भी चीज हो दाल जो आप 12 महीने मूंग दाल रखे हो दाल है तो वे में गद्दो, तो वे में भी घनी मेहनत को नहीं है जो आप मेट आवे मुल्तानी मिट्टी।

0: बैठ के वो ना पाउडर मेट रे में मिक्स कर दो पूरा भेड़ हाथ सो सागड़ो ना ओसन के थोड़ी मेहनत तो में लगी क्योंकि वो पाउडर वे मोइनो मिलावन रे बगा उनमें घोलन रे बगा थोड़ी मेहनत लगी।
1: अच्छा
0: हमें उनमें एक मेक हो गई हमें वो थे आप जो आटो उसने ओड़ो काठी मेट ना ओसन लो ओसन के पछे वीर जी को छोटी छोटी थे गोली बना दो क्योंकि ये जो आप टाबर चॉकलेट कौन खावे ये साइज री उत्ती गोली बनाओ नहीं तो घनी छोटी बनाओ नहीं जरूरत को नहीं क्योंकि वो मेट घनी हुई उत्ती उत्ती बनाए के और कोई कागज में या परात में या कोई पुठे में के में भी और हणो ये जो सागेड़ तावड़ो है जी में तो मन के बूढ़ सुख जावे तो गोले तो समझो बे तीन दिन बे दिन तो लागे ही कोनी एक दिन में ही सुख जावे पर हम बे दिन उन्हें सागेड़ तावड़ो दे तो एकदम सूख खनक बन जावे पछे ये जो न थे हुए धोन रे में ना काल दो कोई तरीके रो जीव पड़े कोनी कोई तरीके री इली पड़े कोनी घुण पड़े कोनी तो एकदम अपर धोन है जो साफ सुथरो और सुरक्षित रह जाओ पर हम ए नहीं तो बेन के आज रो युग है नहीं वर्तमान युग जगह ना पे कोई उनमें हमें कामकाजी महिलाओं भी हुई हमें वो काणो मेट नो लेन भेजो है पर ए है कि अगर कोई फुर्तीली महिला है
1: जी
0: कहो नहीं कह के कोई काम का है ना जो लुगाई कोई होशियार हुए घर काम कर ले बाहर रो कर ले टाबरों रो कर ले तो पासाड़े डोकरे बैठे हुए तो उन्होंने कह करे कि भाई ये हाथा पगाम दिया जगह तो दिया तो सचाणी तो कोई आग रख दिया तो कौन जगह कौन नो मतलब है कि वो थोड़ी होशियार बत्ती हुई तो काम काज रे साथ साथ में ये तरीके रे घर में काम भी
1: कर सके
0: आप करे चार जनों सिखाओ
1: सही है। और वैसे देखो था मुल्तानी मिट्टी रो इतो उपयोग बतायो कि भाई ये सु ए चीज भी बन सके और आप ये सुंदरता ना निखारण वास्ते
0: देखो
1: हमें देखो ये गर्मी रे मौसम में ना ये मुल्तानी मिट्टी ना अगर आप मुंडे माथे या शरीर माथे लगाओ नहीं तो आजकल देखो तावड़े सु टैनिंग हो जावे आजकल सब रे मुंडे से सुनो मारो मुंडे माथे टैनिंग होई मारा हाथा पग में टैनिंग होई तो ए सब चीज बीजे चीजा छोड़ के जो अपनी प्राकृतिक चीज है मुल्तानी मिट्टी ये रो सेवन करें तो त्वचा भी निखर जासे कोई तरीके की तकलीफ भी कोनी हुए और देखो ये कितना
0: धन सुरक्षित पड़े हां
1: धन सुरक्षित
0: लावणी घरे खाली मेट जे
1: तो हमें जरूर
0: अपना आप रे ये चीज निपजे हां ये थे पर मेट
1: पर ये थी तो
0: घर में जे सोनो निकले पड़ियो तो अपे 1000 रुपया कहन
1: सो कोनो
0: फालतूरा और आप चेहरे ने बिगाड़ो आप थोड़ी सी मेट भिजोई और आप फुटरी लगा दी ठंडक भी हुई मेट पगतली हम लगाओ शरीर में ठंडक पड़ी रही
1: जी
0: मेट सु माथो दो तो माथो हमें आजकल थे देखो कौन टावर रहा माथा के हण मन बोला मत माथो दुखे हण मस बात मत करो माथो गरम है हण दिमाग में टेंशन है ए जो छोटी मोटी बात होवे ने हण मुल्तानी मिट्टी सु आपरा ठंडक फर्स्ट क्लास लगाए माथो धोए ने लुगाई रहो कोई लोग गेला थोड़ी था पहले रे जमाने रा जो को महिलाओं ना तो कैंची लगामती हो केसों में और माथा फूटरा धोती हूँ पछे हुए में आलिशान तेल लगाती हूँ पछे माथा गूंथीस था और वो गूंथोड़ा माथा और गीत गाइस था
1: जी
0: तो वास्तव में ना तो देखो अब बहना भी हमेशा मेरी बात सुनी जे कि हूँ हमेशा पुरानी बात बताऊँ तो रुपये में अगर चारों ना भी असर हुए नहीं तो भी हूँ तो समझो कि मेरा करोड़ो गुण आवे
1: जी
0: और आम तो भी हो से
1: वैसे वो एक बात को थे जो भी बात कोई नहीं बड़ी सार्थक हुई और थोड़ी बात से थोड़ी सहमत भी हूँ कि थाना लागे कि कोड़ो गीत भी सुन लियो जाओ तो आलो थाना
0: भैया इनके कार्यक्रम खत्म होते चलते चलते अगर संगीत सू चीज कोई खत्म हुए नहीं तो अपे पाछा आऊं जते बहनों और संगीत चलतो रहे
1: जी बिल्कुल
0: तो आऊं तो देखो फूटरो गीत।

0: वाह साबा, नहीं तो बेन फूटो से गीत सुनायो और हमें यहाँ इनके जी तो करे के बातों करता जाओ तो बाटाल आदमी वे नहीं बखतरी ठाको पड़े पर मैं कहो नहीं कि जो काम काज महिला हो वो समय माथे हर एक काम करे तो हमें अपनो समय हो गए बहनों से सीख ले बन रो तो कर सा घना घना राम राम,
1: राम, राम।

0: छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें आपके जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में

0: नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के CG जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2-3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 विशेष सखी सहेली दिन में 3।
6: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से वीडियो सखी ममता

इनकी दिलचस्प बातचीत आप सुनेंगे। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

को सच ही कहा है, पंछी इनको रात को ठहरे तो उड़ जाए भी।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम्हें।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: चूहा तो नहीं हो गया कहीं मारे डर के, चूहा तो नहीं हो गया कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया।
1: यहाँ

0: फिर बदलाऊंगी।
1: जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी।
0: किसे किया दाऊ पे मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी।
1: अरे जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी।
0: किसे किया दाऊ पे मर गया जी, बड़े बड़े अखियों से डर गया जी।
2: मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे।
1: और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना, और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा, और हमारी जानी मानी अदाकारा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं, बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोताओं, चार मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सहेली सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद, अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
0: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आई हैं, इसके पहले भी आप आ चुके हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खास तौर से विविध भारती से।
1: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम

0: जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला मुझे
1: जी
0: बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से पुरानी। हम लोग पापा हमारे घर में तब तक दूरदर्शन नहीं आया था, तो रेडियोस पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक कानों में
1: जी
0: गूंजती है,
1: समाचार वाचक
0: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल
1: भूले
0: सुरैया
1: बिसरेगी
0: भूले बिसरेगी
1: आज भी प्रसारित होता है
0: हाँ,
1: जी।
0: और वो सुनते थे। और भी मजा आता था, बिना का गीत माला कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है।
1: जी
0: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सबके सब,
1: बिल्कुल
0: तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूं,
1: जी
0: लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं
1: जी
0: रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्नंग था। और बचपन क्या आजकल
1: जहाँ बहुत
0: जब
1: सारे
0: हम
1: चैनल्स हैं
0: बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही, आपके
1: जी
0: गाने
1: बिल्कुल
0: बजते रहते हैं, तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही
1: क्या
0: बचाता
1: बात
0: है।
1: है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा
0: रेडियो
1: जाता
0: रखा
1: था
0: जाता
1: और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री
0: क्रिकेट
1: सुनने
0: कमेंट्री
1: चलते हैं।
0: सुनते हैं।
1: तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने, बताइए हमें।
0: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम पे, सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना
1: क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया हाथ जोड़ के प्रार्थना
0: हाँ,
1: किया
0: और
1: करते
0: जैसे
1: थे।
0: कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का
1: तो
0: कोई
1: भारत
0: भी
1: जीत
0: मैच हो तो
1: जाए
0: भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: कमेंट्री सुन रहे हैं, तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम
0: जरूर
1: और
0: जरूर
1: आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं
0: जी।
2: तो

0: हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ और दिल्ली, वो दिल्ली में भी करे, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा गहरा है,
1: बहुत गहरा,
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई है तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियां होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे और पापा हमको, पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज्यादा तो नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव बहुत
1: जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती
0: है,
1: तो हम लोग प्रिफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
0: क्या बात,
1: फिर मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी। और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसन्न है, पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे बाबा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर अच्छा। चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
0: लग नहीं रही कि आप शैतान थी, बहुत सीधी सादी लग रही है देखने में,
1: बहुत शैतान थी, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चले रहते थे बंदरों की तरह, मतलब मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
0: मोबाइल
1: फोन पे, मोबाइल पे, अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
0: क्या बात है,
1: बंदरों की तरफ, पेड़ों में आम, आजकल के बच्चों ने
0: खाना,
1: आप लोग को मतलब हाँ। या तो ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाएं, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम, जामुन, अमरूद खाए हुए हैं, इसका मजा ही कुछ और था।
0: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए,
1: हाँ।
0: अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
1: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
0: साधन है,
1: साधन भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस, और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी,
0: हाँ।
1: तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राइव था, MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लैबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यवसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
0: उत्तर प्रदेश था,
1: उत्तर प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स, तो मैंने कहा नहीं नहीं हमारे नॉर्थ में एक बड़ा वैसा ही है, फिल्म्स बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर,
0: अलग ही दुनिया थी,
1: नहीं सोच ही नहीं सकते थे
0: जी।
1: तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का 3 पेनी ऑपेरा, इतने में NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि NSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम NSD थी, अब तो काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता
0: पुणे में है, और
1: पुणे में है, और लखनऊ में भी अब खुल गया है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। उसी दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली, तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से NSD का भी इंटरव्यू दिया,
0: किसी को बताया नहीं आपने,
1: किसी को नहीं बताया घर में, और जब लेटर आया NSD का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
0: NSD करूंगी,
1: NSD में, तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है, तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, बेटी का, भटजी की नौनी बहुत होशियार है, अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रहे भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ, मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको

0: स्कॉलरशिप मिली है और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी
1: नौटंकी
0: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी भांड ये तो भांड के देते भांड भी करेगी बहुत पूरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे वो खुद ही अपने आप में लेखक थे डॉक्टर हरिहर शैलेश वो वहां के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो अगर तुम में वो रहा मतलब बाद में आके कर लेना है शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही पापा देखो हो सकता है 40 साल अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ मेरे पापा खुद मुझे NSD लेकर गए।
1: क्या बात है
0: वहां मेरा एडमिशन कराया और वहां से मेरा करियर चेंज हो गया 3 साल की ट्रेनिंग फिर वहां रेपेट्री ज्वाइन करके रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती कि अपने पैरों पे खुददारी 250 की स्कॉलरशिप से मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगा
1: क्या बात है उसमें बहुत बड़ी 250
0: की स्कॉलरशिप मिलती थी उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया वापस तो नहीं आ सकती थी कैसे करें क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने NSD रेपेट्री ज्वाइन किया 600 रुपए पहले मिलते थे उसके बाद 1,000 2,000 3,000 हाईएस्ट जो होता था एक ग्रेड
1: उसमें बहुत बड़ी रकम थी
0: बहुत बड़ी रकम उसी में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे में ये मेरा सफर था दिल्ली से
1: जी
0: मतलब देहरादून
1: से दिल्ली तक का और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं जब कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और हमारे सामने हमारे विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन वाला। आज हम

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहाँ की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गांव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गांव है, भटवाड़ी, हाँ, वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी
0: जिसने अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसटी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहां के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी, देहरादून सहारनपुर बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती, और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक

0: कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
1: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
0: क्या करें, और उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
1: जीवन है।
0: अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी, अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई जो मैंने गोद लिया तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
1: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है। हाँ। यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनीस है वो सब, ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या वो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहां पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहाया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहे हैं, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गाँव है जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहां पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा, मैंने बात की है सरकार से, वहां पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते थे, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहां पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके, तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है, और
0: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं, और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है,
1: हमने तो ये भी सारा काम लड़कियां और औरतें ही करती हैं, घास काटने से लेके जानवर चुगाने से लेके सब कुछ।
0: हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं,
1: बिल्कुल
0: सलाम तो हम आपको भी कर रहे हैं,
1: पहाड़ियों पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं
0: जी जी,
1: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन, महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
0: क्या बात है सचमुच। तो हम इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी शिवपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी,
1: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये एनवायरनमेंट इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारा भी कर्तव्य
0: निजी स्तर पर,
1: निजी स्तर पर कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
0: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम जामुन, बस वही हम
1: वही हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी, तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
1: जी जरूर।
0: ये बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।
2: ये गुड़िया नचे दिया गुड़िया।

0: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना।
1: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।

0: चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना,
1: चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना,
2: मेहंदी लगा के रखना, होली सजा के रखना,
3: हाय हाय हाय।

0: उड़ उड़ के तेरे जुल्फे करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे।
1: छुप जाए सारी कुड़िया भरने कदम के मारे,
0: नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना, लेने तुझे गौरी आएंगे तेरे सजना।
2: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना,
1: सजा के रखना,

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी, देवकी भौजाई से यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे, भाभी को भौजाई देवकी भौजाई है ना, याद है आपको?
1: जी जी।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे तो आजकल तो एक एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसमें कुछ खास कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना तो NSD रेपर्टरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5 और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थिएटर पैसा नहीं होता तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशिया के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे तो जैसे बैठे रहते हैं। अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते हैं क्या इमेजिन की आदमी कि औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं NSD से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके प्रोड्यूसर के साथ कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
0: दिलवाले होता है और
1: कुछ होता है कि रिफत भी और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ और परदेश की बुआ और बंधन, बहुत सारे किरदार।
0: उमराव जान में भी आपने काम किया,
1: उमराव जान में भी काम किया और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था
0: जी जी का
1: सुलक्षणा और ससुराल सिमर का भी जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल हप्पू की उल्टन पलटन,
0: जी जी जी वो बहुत किरदार हुआ,
1: कटोरी अम्मा वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है पसंद किया है। तो तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही है, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है या मैं प्रेम की दीवानी हूँ या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने डीडी एलजे की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है, मैंने नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है
0: जी। और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दे कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
1: सूरज का सातवां घोड़ा
0: मम्मो कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहां एक तरफ कला फिल्म एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
1: राज की बात है ये, क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते कह रहे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है, शेक्सपियर ने भी कहा है कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
0: रंगमंच है,
1: रंगमंच है जिंदगी। तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये तो जिंदगी सिखाती है
0: जी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है,
1: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब कुछ ज्यादा बड़ी चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
1: जी,
0: एक अंश सुनते हैं।

0: काइट फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई एनएसडी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूंगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है जरूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं काफी सारे लंबे आर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आपने

0: कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए
1: जी।
0: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा
1: जी बिल्कुल।
0: और आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
1: बिल्कुल। और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
0: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
1: बहुत संघर्ष था इनकी जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती है, चाची बनती है, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी।
0: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूफ करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी मतलब आप लड़की है, आप देखने में खूबसूरत है तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, क्यों हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला के अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
1: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बतौर हिमानी शिवपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
1: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस लंबी यात्रा
0: है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है
1: जी। अब गाना सुनवाए एक,
0: जरूर।
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल
0: जी।

हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने

0: भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है। तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें। तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर हम जरूर आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली। तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था। और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रीकर, यूनुस खान और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ। और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं। आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहां हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहां पे,
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे के चरण जी, जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
0: जी
1: और जसपाल मुनि जी, हरि ओम जी, और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
0: जी।
1: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
0: अच्छा।
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
0: जी जी,
1: वो भी बांसुरी वादक है और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए।
0: जी जी।
1: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर,
0: ये सफर इस तरह से चलता रहा।
1: जी दिल्ली।
0: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं।
1: जरूर।
0: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
0: अच्छा। देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूँ
1: जी,
0: और वो है तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं।
1: जी जी,
0: है ना
1: जी, जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना
0: जी,
1: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है।
0: क्या
1: पिताजी के साथ।
0: वाह।
1: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
0: वाह।
1: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
0: जी जी जी।
1: और ये आप जब रियाज करते हो तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
1: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
0: वाह।
1: और ये जो थ्रेडिंग है
0: जी,
1: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
0: अच्छा।
1: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूं, मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
0: जी,
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना मुझे।
0: क्या बात है।
1: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
0: वेणु,
1: और वेणु क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं।
0: जी जी।
1: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जरोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हूँ
0: जी,
1: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
0: वाह।
1: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की, और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शरणाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
0: बिल्कुल।
1: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें, और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
0: सबको मिले,
1: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
0: बिल्कुल।
1: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सके, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
0: जी,
1: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
0: जी,
1: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
0: जी जी,
1: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई कजन ब्रदर्स है शहनाई बजाते हैं
0: जी जी,
1: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्वनी कुमार जी, और तीन भाई हूँ, एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
0: जी जी।
1: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें, उन्होंने राग मालकोस बजाया था
0: जी,
1: मेरे भाई ने राग हंसोदनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
0: वाह वाह वाह,
1: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
0: जी जी, क्या बात है।
1: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
0: जी,
1: जो मैं आपको सुनाऊंगा
0: जरूर,
1: उनके बारे में भी बताऊंगा
0: जी।

0: महाराज जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले इस शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले, वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, तो इस तरह से
1: मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी।
1: हाँ, तो इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी,
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूं तो भी नहीं बता सकता
0: जी,
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ेगा,
1: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस चीज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल,
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए
1: जी। वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
0: जी,
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी,
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी जी जी,
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
1: जी
0: जी, और
1: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी ऊंचाई
0: जी जी, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे,
1: एक मिली पिक्चर आई थी
0: जी,
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: बाबा
1: अन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी फेरिस है।
1: सरबजीत

0: है, फितूर पिक्चर है,
1: जी
0: नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मन मर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली एलएलबी,
1: वाह वाह
0: बहुत सारी पिक्चरें हैं
1: जी,
0: और भी
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है
1: हाँ
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है,
1: जी जी बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं
1: जी,
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है
1: जी,
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं,
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहां पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच हो, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है, करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक, घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं, और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
0: जी
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी।
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम
0: डिफरेंट है बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी।
1: सो ये इसका

0: वाह क्या बात, क्या बात है।
1: ये ओकेरिनो है
0: जी जी,
1: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
0: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
1: दिस इज ओकेरिनो
0: जी,

0: तो उसका ऐसा साउंड।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: है। ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में गया था इटली में,

0: वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट थी, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहां पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर।
0: और ये आप देख रहे सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गाऊं।
1: जरूर, बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ,

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी निकल लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी,
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में प्रोग्राम खत्म हो गया मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस है
0: जी।
1: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में,
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल जहां से मैं, ये तो मैंने खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है रिटर्न एंड विंड्स, उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
0: जी।
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुना था
0: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है।

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने।
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको।
1: जी जी,
0: मैंने अपने एल्बम में भी बजाया।
1: जी,
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजे।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: जी,

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, फ्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले
0: जी। जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है
0: जी जी,
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,
1: ये भी सारे गाँव है,
0: जज्बात आ गए,
1: पर इसमें प्यार है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
0: जी,
1: या अगर बताया जाता है संस्कार से, बताया जाता है अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
0: जी,
1: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब 4 लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
0: जी,
1: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
0: यस,
1: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
1: क्या बात है,
0: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है इस महफिल को यहाँ रोकते हुए।
1: आपका आपका और इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, पर क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है।
0: मैं समझ सकता,
1: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
0: जी,
1: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने। एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
1: तो मैं
0: गाने की फरमाइश कीजिए।
1: हीरो
0: देखिए, फरमाइश भी आ गई।
1: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
0: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
1: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ कुछ।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
1: कॉम्प्लीमेंट है।
0: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
1: जी,
0: और आपको भी हीरो कह दिया है।
1: मुझे निशब्द कर दिया आप।
0: जी
1: सो ये हीरो धुन
0: जी
1: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
0: शुक्रिया,
1: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। मैं आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को।
0: बिल्कुल।
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरीवादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे कि कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा
1: था। ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे वाह।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन सिंगर गा जाते हैं, ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है
0: जी।
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके,
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: गाने, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारस जी विविध भारती के स्टूडियो में आने के।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

युवाणी सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम युवा जो भारत की पहचान है, आत्मनिर्भर भारत की एक शान है। हम सबको ये चीज़ पता है कि जो युवा है वो भारत का नक्शा बदल सकते हैं और बढ़ते भारत की सारे कर्मभार हमें हमारे सिर पे हैं। हमें बहुत कुछ करना है अपने भारत को आगे ले जाने के लिए। तो आज का जो युवा है वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता युवा आज के नए और सशक्त भारत की पहचान है। शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और नवाचार के दम पर युवा अब नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं देश के युवाओं के बारे में जो आत्मनिर्भरता की इस राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज की जो युवा है वो लीक से हटकर सोचते हैं। उनके पास तकनीकी ज्ञान है, उनके पास ऐसी टेक्निक्स है जिससे वो पुराने तकनीकों पर नहीं, नई तकनीकों पर सोच रखते हैं। युवा AI, ड्रोन तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत युवा स्वदेशी उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और विभिन्न राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत युवाओं को व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी दक्षता प्रदान की जा रही है। युवा किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव को महत्व दे रहे हैं और अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल रहे हैं। डिजिटल माध्यमों ने युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग ने युवाओं को घर बैठे या छोटे शहरों से भी वैश्विक स्तर पर काम करने की स्वतंत्रता दी है। कुल मिलाकर आज का युवा परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी क्षमताओं और प्रतिभा को पहचान कर आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रहा है। भारत की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने और इसमें युवाओं की भूमिकाओं को गहराई से समझने की जरूरत है। आज का युवा जो सोच सकता है वह हमें करके दिखलाता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा, आज्ञा पालन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और यह सारी खूबियां हमारे युवाओं में हैं। हम खुद का ध्यान रखने के लिए अपनी दूरी पर अड़िग रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और हम अपनी सहायता की आवश्यकता होने पर अन्य लोगों से सहायता मांग सकते हैं। हालांकि वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह ने विश्वास करना भी सिखाया है। आप स्वयं को पहचानें, सीख कर अपने निर्णय स्वयं लेने का अभ्यास करके अपने मूल्यों को कायम रखकर आत्मनिर्भरता विकसित कर सकते हैं। जब आप इन मूल्यों का उपयोग अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन के लिए करें तो अपनी अंतरात्मा की शक्ति को कम ना आके और स्वयं को पहचानने से न डरें। युवाओं को सशक्त बनाना केवल शिक्षा और कौशल प्रदान करने तक सीमित नहीं है, यह अवसरों का सृजन करने से भी जुड़ा है। युवाओं में उद्यमिता, नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली पहले अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और युवा उद्यमियों को मंच प्रदान करना रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र ही आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त विकासशील होता है। भारत भी आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ विश्व में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं को पहचान कर उन्हें सुधारना होगा और नई नई चीजें सीखने का प्रयास करना होगा। हमारे युवा अपनी कमियों को बखूबी जानता है और उनसे आगे बढ़कर अपनी खूबियों पर डटे रहता है। आत्मनिर्भरता का अभाव तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है। आत्मनिर्भरता के बहुत से महत्व हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति अन्य लोग जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि का अनुभव रहता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों के नियंत्रण में आसानी से नहीं आता और व्यक्ति बेरोजगारी से ग्रस्त नहीं होता। तो यही सब चीजें हमारे युवाओं में हैं जो कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए आगे की बागडोर संभाल बैठे हैं।
युवाओं के लिए स्वतंत्रता का अर्थ नई चीजों को आजमाना, अधिक जिम्मेदारी लेना, स्वयं निर्णय लेना और यह पता लगाना कि वे कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना वयस्कता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए किशोरों को प्यार, सहायता, आदर, स्पष्ट नियम, जिम्मेदारी और उनके निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना होगा। सीमाएं नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह है जो यह परिभाषित करने में मदद करती है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। सीमाओं को घर के नियम या बुनियादी नियम भी कहा जा सकता है। अपने बच्चे को स्वस्थ सीमाएं बनाना सिखाएं, उनका सम्मान करना सिखाएं, उन्हें किशोरावस्था और व्यस्तता के दौरान सुरक्षित रहने में मदद करवाएं। उन्हें ये सब चीज़ें बताते रहें कि उनकी जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, ताकि वह सही निर्णय ले सके। तभी हमारा भारत आगे की ओर बढ़ेगा और हमारे युवा डटा रहेगा। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: धन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, आप सुन रहे थे दीवाने हुए पागल का ये गाना मेरी जाने जिगर अनु मलिक की आवाज़ में। साथियों, हम बात कर रहे हैं आपसे इस बढ़ते तापमान के बारे में। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है वह अपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मी चरम सीमा पे है और इसमें हमें अपने खुद का ध्यान

0: रखना है। हमें अपना और अपने परिवार वालों का इस मौसम में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह ऐसा मौसम है जो आपको लू की चपेट में ले सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और लू से बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए। आपको जब भी घर से निकलना है तो पानी पी के निकलना है, और थोड़ी थोड़ी देर में आपको पानी पीते रहना है। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, इस पे आपको पूरा डट के रहना है कि हाँ, ये तो हमें दिन में अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड पे रहना है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। जितना हो सके आप धूप में ना निकलें। हाँ, ये होता है कि हमें बहुत बार निकलना होता है धूप में अपने काम की वजह से या क्या, तो आप जब भी बाहर निकलें तो अपने मुंह को, हाथ को पूरा कवर करके निकलें, कॉटन के कपड़े पहने और आँखों में सनग्लासेस लगा के निकलें, जिससे कि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। आपकी बॉडी डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में ना आ सके, तो काफ़ी हद तक आप इससे बच सकते हो। मौसमी फल यानी कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये खीरा हो गया, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से ठंडा और कूल रखता है। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब हर आधे घंटे में आपको पानी पीने की आदत डालनी ही डालनी है, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। 12 से 4 ये टाइम एक ऐसा होता है जबकि जब गर्मी अपने पीक पे होती है, तो इस टाइम आप अवॉइड करिए निकलना बाहर। जितना हो सके आप इस टाइम ना निकले घर से बाहर, तो आप गर्मी और लू की चपेट से बच सकते हैं। अगर आप लू के कांटेक्ट में आ गए हैं, लू ने आपको अपनी चपेट में ले ही लिया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और जितना हो सके आपको नींबू पानी, छाछ, इसको अपनी डाइट में शामिल करना होगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्द आराम मिले। अगर आपको लू लग गई है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, बुखार जैसा लगना, उल्टी जैसा फील होना, तो ये सारी चीज़ें आपको, वीकनेस लगेगी, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आप लू की चपेट में हैं। आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना ही होगा। डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, उनकी मेडिसिन लें, ORS लें, और इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक।
1: जाए हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: गली गली

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता है कई गाना, कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ में, वो लड़की है कहाँ। साथियों, मैं बात करना चाहूँगी आपसे अटल भूजल योजना के बारे में। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का कुल परिव्यय 6,000 करोड़ रुपये है तथा यह 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई थी। 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 50% विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। बकाया 50% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों

को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन और व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देगी। राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रबंधकों को मजबूत बनाने के लिए नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार और जल उपयोगकर्ता समूहों को मजबूत बनाना है। डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना, मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से प्रबंधन प्रयासों को लागू करना, यह सब इसके प्रमुख घटक हैं। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों की क्षमता निर्माण और भूजल निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिए संस्थागत मजबूती से भूजल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्नत और वास्तविक जल प्रबंधन से संबंधित उन्नत डेटाबेस और पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व के तहत जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना है। भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, ताकि सतत भूजल प्रबंधन के लिए निधियों के न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधता, विद्युत फीडर, विलगन आदि जैसे मांग पक्ष के उपायों पर ध्यान देते हुए उपलब्ध भूजल संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना है। भूजल देश के कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 65% और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में लगभग 85% योगदान देता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण की बढ़ती हुई मांग के कारण देश के सीमित भूजल संसाधन खतरे में हैं। अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक और अनियंत्रित भूजल दोहन के इसके स्तर में तेजी से व्यापक रूप से कमी होने के साथ साथ भूजल पृथक्करण ढांचों की निरंतरता में गिरावट आई है। देश के कुछ भागों में भूजल की उपलब्धता में गिरावट की समस्या को भूजल की गुणवत्ता में कमी ने और बढ़ा दिया है। अधिक दोहन, अपमिश्रण और उससे जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों के कारण भूजल पर पड़ते दबाव के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा खतरे में पहुंच गई है। इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक उपचारात्मक प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने अटल भूजल योजना के माध्यम से देश में भूजल संसाधनों की दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रणीय पहल की है, जिसमें विभिन्न भूआकृतिक, जलवायु संबंधी, जल भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थिति के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 राज्यों में पहचान किए गए नए भूजल की कमी वाले प्रखंडों में टॉप डाउन और टॉप बॉटम का मिश्रण बनाया गया है। अटल जल को भागीदारी, भूजल प्रबंधन और निरंतर भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय स्तर पर व्यवहार्य परिवर्तन लाने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। इस योजना में जागरूकता कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण, मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय तथा उन्नत कृषि प्रक्रियाओं सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कल्पना की गई है। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

साथियों, आप सुन रहे थे हम है राही प्यार का ये गाना, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, नरीम श्रवण की आवाज़ में। साथियों, मैं बात करना चाहूँगी अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित करती हैं। इन योजनाओं को मुख्य रूप से शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तैयार किया गया है। इन मुख्य योजनाओं में से है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। कक्षा एक से लेकर पीएचडी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यावृत्ति, यह भी अल्पसंख्यक छात्रों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद करती हैं। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, यह भी अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक उद्योगों से जुड़े लोगों के कौशल को बढ़ाना है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना है NMDFC ऋण योजना। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इस योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही है, ताकि इन इलाकों का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। इन सभी योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आप भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पात्रता जांचने और फॉर्म भरने के लिए आप पोर्टल का उपयोग भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने अल्प समुदायों के लिए बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिससे भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए यह एक पहल साबित हुई है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और पहलों से संबंधित बहुत सी उपलब्धियां और अंतर्दृष्टि मैंने आपके साथ साझा की है। यह योजनाएं जो है वह भारत में शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है सभी को आगे बढ़ाना, ताकि सब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिल सके। भारत सरकार में इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू की गई है। आपको समय समय पर इन सब की जानकारी प्राप्त होती रहती है। आप उसका जितना हो सके उतना फायदा लेकर अपने लिए कह सकते हैं आगे बढ़ने के अवसर चालू कर सकते हैं। साथियों, हम अपनी चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, हम सुन रहे थे हम दिल दे चुके सनम का ये गाना निमूड़ा। साथियों, हम बात कर रहे हैं युवा और नवाचार के बारे में। युवा और नवाचार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। युवा ऊर्जा, असीम रचनात्मकता और जोखिम लेने की क्षमता के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। आज के युवा सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का नए और प्रभावी समाधान खोज रहे हैं। नवाचार के माध्यम से युवा अपने विचारों को स्टार्टअप में बदलकर रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। युवाओं की सोच और तकनीकी कौशल देश को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा रही हैं। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है कि युवा जो है वो भारत का निर्माण कर रहे हैं। आत्मनिर्भर युवा ही देश का सच्चा कह सकते हैं कारीगर है। युवाओं को बिना असफलता के डर के नए प्रयोग करने के अवसर दिए जाने चाहिए। अनुभवी पेशेवरों द्वारा युवाओं को सही दिशा और सलाह प्रदान करनी चाहिए। व्यवहारिक परियोजना और नए व्यवसायों को शुरू करने के लिए फंड की उपलब्धता की जानी चाहिए, जिससे कि युवाओं को आगे से आगे बढ़ने का मौका मिले। युवाओं में हर समय एक नई सोच जन्म लेती है। आज जब युवा कुछ करने का सोच रहा है तो किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के विकास के साथ ही जुड़ा होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जीवन के हर पहलू में विज्ञान, तकनीकी और शोध कार्य अहम भूमिका निभाएं। विकास के पथ पर कोई देश आज तभी आगे बढ़ सकता है जब उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बने। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध तथा अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, इस पूरी प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज जब भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी के स्तर पर खड़ा है, तो सरकार, समाज और व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उसी युवा को बेहतर तकनीकी और शोध नवाचारों के सभी अवसर मुहैया कराए, ताकि वह अपनी योग्यता, लगन और ज्ञान से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सके। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ भारत की युवा आबादी और उनकी कार्य क्षमता पर आधारित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर हम देखें तो हम काफी ऊपर के दर्जे पे हैं। भारत ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की स्थिति में पहुंच चुका है और विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक अब स्वदेश लौट रहे हैं। व्यावहारिक अनुसंधान गंतव्य के रूप में भारत उभर रहा है। तथा पिछले कुछ वर्षों में हमने अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काफी विकास किया है। वैश्विक अनुसंधान और विकास खर्च में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। आज हमारे देश का युवा वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण, जैव ऊर्जा, जल तकनीकी और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। वैश्विक

इंडिया साइंस नाम की दो नई पहलों की शुरुआत की गई है। इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिक का जीवन और कार्य प्रौद्योगिकी के विकास तथा राष्ट्र निर्माण के साथ गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो इशारा करते हैं कि भारत आज विश्व में वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा में कहाँ ठहरता है। आखिर क्यों भारत इतने विकास के पथ पर है, इसका अगर सीधा सीधा जवाब ढूंढा जाए तो वह सिर्फ है भारत का युवा। भारत का युवा अभी कुछ टाइम से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा है। उसे यह पता है कि उसे क्या करना है और उसे लाइफ में क्या हासिल करना है। पिछले बहुत सालों से हमने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ऐसे समय में देश की युवा आबादी के लिए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। इन सभी बातों को मद्देनजर एक ऐसी नीति बनानी होगी जिससे समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक प्रसार और नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक स्तरों से युवाओं के बीच विज्ञान के अनुप्रयोगों के लिए कौशल को बढ़ाने पर जोर दिया जाए, जो कि एक उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सही कदम होगा। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

0: gali, gali.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

प्रभु राम पार्टी गाए लोक भजन और लोकगीत आप सुनेंगे आज के राजस्थानी लोक संगीत में रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8 बजे और उसके बाद रात 9:15 पर।

किसान वाणी कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। वंदना होगी शाम 6:15 पर। श्री राम चरितमानस गान की 85वीं कड़ी आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। ये थी हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं श्री राम चरितमानस गान की 85वीं कड़ी।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

स्वविजय कहबीनी। हस कही थी चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु स्व

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरितमानस गान की 85वीं कड़ी। मुख्य गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। आइए सुनते हैं वंदना।

मन सभा में रंग पर जाओगी, मन सभा में रंग पर जाओगी महाराज।

जियो रामा केसर तिलक लगावो जी, महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा।

0: Money shall come, and goodbye is gone. Oh, money shall come, and goodbye is gone.
1: महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी। महाराज

0: सी हमारी प्रभा में रंग बरसाओगी।
1: अभी आपने सुदेश भोसले और साथियों को सुना, आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर को।

0: ताकि निर्धन निर्बल थारे आगे शीश झुकावे,
1: आगे शीश झुकावे।
2: सुदेश भोसले और साथियों गाए इस लोग इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिंदी और राजस्थानी समाचार और जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर जैसलमेर केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें, यही सही मायनों में विकास है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर देकर उनका जीवन बदला है। श्रीमती मुर्मू ने देश में प्रतिभा की पहचान, पोषण और विकास के लिए सही मंच देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, खासतौर पर जनजातीय समुदायों के युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें आपकी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर सहित 3 स्थानों पर 39,18,00,000 रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें इंडोर स्टेडियम, पुलिया निर्माण और बूढ़ाधीत के विकास कार्य शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी है। श्री बिरला ने कहा कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वो गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50,00,000 की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सोशल मीडिया में श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार अवसरों और खेल संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन पर भी चर्चा की गई। साथ ही माय भारत के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देने संबंधी रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इनकी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य भर के पेट्रोल पंप डीलरों से संवाद भी किया। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के 3 दिनों के अंदर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च और अप्रैल महीनों के बाद 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि लोगों को ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर पिछले महीने हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद शपथ ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा आईडी बनाने में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इससे नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। आभा किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का डिजिटल माध्यम है। इस डिजिटल स्वास्थ्य पहचान से चिकित्सा की पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है। 14 अंकों की इस यूनिक हेल्थ आईडी से पुरानी बीमारियों, लैब रिपोर्ट्स और दवाइयों का ब्यौरा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने बताया कि इसमें 14 मानकों पर जांच की जाएगी। इससे किसानों को खाद के सही उपयोग में सहायता मिलेगी। इस पहल से मिट्टी के पोषक तत्वों और सिंचाई जल की गुणवत्ता भी परखी जाएगी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही फसलों की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर भीलवाड़ा में भी खेत बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में एक पटवारी अंकुश कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने खाते के विभाजन के एवज में 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और घूस की पहली किस्त के रूप में ये राशि ली थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न शहरी निकाय एक दूसरे की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नवाचार साझा करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता लाने के लिए नियमित कार्यशालाएं करने पर भी बल दिया। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत

0: 27 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाए जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद राज्य के ज्यादातर भागों में दिन और रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे मापा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि अंधड़ और तेज हवाओं से कई जगह व्यापक नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात आए अंधड़ से कई गांवों और ढाणियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी रहने से अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत का अनुमान है। अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि कल चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नाकाबंदी प्वाइंट बनाए गए। इन पर 74,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई और 15,000 से अधिक चालान काटे गए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कल नई दिल्ली में दिए जाएंगे। समारोह में देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कृत होने वाली पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वीरता और विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। सूर्य नगरी जोधपुर में बीते महीने भीषण गर्मी के बीच विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रही। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के जोधपुर दौरे और विकास से जुड़े समाचार भी खास रहे। जोधपुर शहर ने पिछले दिनों अपना 568वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना का समारोह बीएसएफ कैमल फ्रंटियर बैंड कार्यक्रम के साथ हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली ने किया। इस दौरान मेहरानगढ़ में पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। तूर जी के झालरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में भी कार्यक्रम हुए। जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया। वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जोधपुर स्थित भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अप्रैल 2026 तक यहां से 181 इलेक्ट्रिक इंजन कमीशन किए गए। शेड से निकले इंजनों से उत्तर पश्चिम रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और 61% मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत पीच गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति तथा जैविक और कंपोस्ट खाद के महत्व की जानकारी दी। काजरी की ओर से ग्राम सोइत्रा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज परिहार ने किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी आर चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार मिला है। देश भर के 28 केंद्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान, उन्नत तकनीक विकास और तिल की 9 उन्नत किस्मों के विकास के आधार पर मंडोर को ये सम्मान दिया गया। जोधपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों की बदौलत 10वें स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन में उत्तर पूर्व रेलवे पहले और दक्षिण रेलवे तीसरे स्थान पर रहे। जोधपुर में मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन हुआ। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर ध्वज पूजन के साथ शुरू हुई परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत इन दिनों विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 5 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जल सेवा, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल की महत्ता बताई जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में जिले के ओसिया में रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। ईद उल अजहा का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन शांति और कौमी भाईचारे की दुआ मांगी गई। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,00,000 बत्ती आभा आई डी बनार, देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश की ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य की निशानी बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रो फायदो लेवन वाला ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति कहो कि समाज रा सगला तबका रो माली तौर और भाई लिखाई रा हलका माय विकास असली बरकत है। श्रीमती मुर्मू कहो कि वजीफा री सरकारी योजना मा जनजातीय समुदाय रा नौजवाना ने आला दर्जा री भनाई लिखाई और मौका देर वानी जिंदगी माए बदलाव लाई है। वह देश माए प्रतिभारी पिछाण पोषण और विकास सारू सही मंच मुहैया करावन री जरूरत मत है जोर दीनो। राष्ट्रपति नौजवानों वानी जड़ाओं जुड़िया रहवन बाबत कहो।
4: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा सुल्तानपुर समेत तीन ठोड़ा करीब 39 करोड़ 18 लाख रुपया खर्चों कराई चा विकास रा काम जनता ने सौंपया और नुआ कामा री शुरुआत कीनी। आम आए इंडोर स्टेडियम और पुलिया बनावन रा काम में शामिल है। ये मौके बिरला कहो के सरकार किसाना ने हमारी उपज रा वाजिब दाम दिलावन सारू खेती बाड़ी आधारित उद्योग ने बढ़ावो दे रही है। वह कहो के सरकारी मोल माथा गेहूं री खरीदी री आखिरी तारीख ही 6 जून कर दी रिची है। श्री बिरला कहो कि हर रहवासी री मूलभूत जरूरतां पूरी करण सारो सरकार लगातार जतन कर रही है।
5: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठा वो गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा लहराए। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या आप बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
3: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात की। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री बतायो कि मुलाकात रे दौरान राज्य में नौजवाना रा कौशल विकास नौकरी धंधा रा मौका और खेलना रा बारा में चर्चा करी ची। श्री शर्मा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सा गई चर्चा कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जाओं जुड़ी जानकारी दीनी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज राज्य में ईंधन रिपूर्ति व्यवस्था रो जायजो लीनो। इस दौरान वह प्रदेश रा पेट्रोल पंप डीलरां सागे बातचीत कीनी। तेल कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि रसोई गैस री टंकियां बुकिंग रा 3 दिन में पुगाई जा रही है। वे बतायो कि मार्च और अप्रैल महीना पाछे 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर री बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रा सचिव अम्बरीश कुमार कहो कि लोगों ने ईंधन रिपूर्ति रे बारे में चिंता करण री जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का न्यूली रिजी परीक्षा री कॉपियां माए मिली गलतियां रा सत्यापन और कॉपियां ओजू जंचावन री अर्जी देवन सारू पोर्टल आज शुरू फेंक्यो। पोर्टल 6 जून ताई खुल्यो रहवेला। CBSE रे मुजब ओसु बीतो जहाँ चोरी कॉपियां ने प्रति ले चुका विद्यार्थियों सारू ही मुहैया कराई चुको है। दिल्ली री एक अदालत नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में आरोपित 5 जना ने जेल में बंद रखने की मियाद ई महीना री 15 तारीख ताई बढ़ा देनी है। CBI मामला में हाल ताई 13 जना ने गिरफ्तार किया है। ध्यान योग है कि पेपर लीक रा आरोपों पाछे लाडला महीना भी नीट UG परीक्षा रद्द कर दी रिजी ही जो 21 जून ने पाछी ली जावेला। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट रा 5 नुआ जजा ने पद री शपथ दिराई। न्यायमूर्ति शील नागू न्यायमूर्ति चंद्रशेखर न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सागे आला वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम री सिफारिश पाछे केंद्र री मंजूरियों शपथ दिराई ची। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनावन रा मामला में राजस्थान देश में दूजी ठोड़ माथे आ गयो है। राज्य में हाल ताई 7 करोड़ 19 लाख 32 आभा आईडी बनाती रिची है। आभा आईडी किनी रहवासी रा स्वास्थ्य रो रिकॉर्ड हिफाजत रखने रो डिजिटल जरियो है। 14 अंक वाली इन यूनिक हेल्थ आईडी जूनी बीमारियां जांच रिपोर्ट और दवाइयां रो ब्यूरो रखो जावे है छिणु जरूरत पड़िया डॉक्टर मरीज री स्वास्थ्य री लारली जानकारी आसानी हासिल कर सके है।

0: भीलवाड़ामाई किसान गोष्ठी राखी छी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर में एक पटवारी ने 50,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वहां माथे खातारा बंटवारा री एवज में 1,00,000 रुपया री घूस लेवन और घूस री पहली किस्त रा तौरो आ रकम लेवन रो आरोप है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी रा कामकाज रो जायजो लीनो। अहलकारन सागे मीटिंग में वह साफ सफाई रा काम में जनता री भागीदारी ने मजबूत बनावन रा हुकम दीना। मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा शहरी निकाया ने एक दूजा रा काम करन रा बेहतरीन तरीका और नुआ काम री जानकारी देवनी चाहिए। अरबे मौसम राज्य रा घनखर हल्का में आंधी बारिश भी छे। पारो सामान्य 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतर गयो है। अंधड़ और जोरदार बायरो बाजन रे कारण कई थोड़ा नुकसान री शंका है। माना जैसलमेर खबर नवीस बतायो के वछे काल रात आया अंधड़ रे कारण कई थोड़ा बिजली री पूर्ति ठप वेगी।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग आज ही जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का माई बादल री गाज सागर बिरखा भेवन और कठे कठे ओला पड़बा रा आसार जताया है। महकमा रा मुजब काल और 4 जून नई बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग माई कठे कठे आंधी बारिश माई ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। इन दौरान कठे कठे तेज अंधड़ सागे बिरखा भेवन री संभावना है। मौसम महकमा रे मुजब आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार है। प्रदेश में अपराधा री रोकथाम असामाजिक तत्व माथे लगाम लगावन और यातायात नियमा री पालना ते करण सारू नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वी के सिंह बतायो के काल चलाई गया ई अभियान रा तहत 74,032 गाड़ियां री जांच कर 15,002 चालान काटी गया। देश री 42 बेहतरीन पंचायतों ने काल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 नवासी चावेला। कार्यक्रम में 34 ग्राम पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार देर नवाजी जावेला। नवाजी जावन वाली पंचायतों की ओर माना कामकाज का तरीका री जानकारी दी जावेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 सारू 31 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीका अर्जियां दी जा सके है। वो इनाम वीरता, विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला समेत न्यारा न्यारा हल्का माए बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करने वाला बच्चा न दियो जावे है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून ताई अहमदाबाद माए रखी जावेला। अमरीका रो योगा एथलीट दल ही इन माए शामिल भेला। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF रा संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यों वाला अमरीकी दल री अगुवाई करेला। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीच मौजूदा सीरीज रो तीजो और आखिरी T20 मैच आज रात 11 बजे शुरू भेला। वो मैच इंग्लैंड रा टॉन्टन में भेला। भारत यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिक्स रा अर्धशतकां री बदौलत सीरीज रो पहलो मुकाबलो 38 रन जीत्यो हो, जबकि दूजा मैच में इंग्लैंड ने 26 रन जीत मिली है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7 करोड़

0: 19 लाख बत्ती आभा आईडी बनार देश माए दूजा पायदान माथे पुग्यो। हर प्रदेश माए आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह माए पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। पानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: एफ एम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
2: के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो बेटा देखो कि आज मंगलवार है, आप फोन इन कार्यक्रम में सगला किसान भाई सूर्य भाई घना राम राम। तो आज अपने पधारा है संजय कुमार जी, कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक कृषि विभाग जैसलमेर। आप बातचीत कर सही सर को देखो के सरकार रे समय समय माथे किसान और आर्थिक उन्नति वास्ते और खेत रो सुदृढ़ीकरण वास्ते मिट्टी पानी जाँच वास्ते कई चीज़ों रा अभियान चलाती रही। तो हणों की कार्यक्रम चल रहा है कौन करे कि ये हुए माथे आप बातचीत कर सौ। बाद में भी अगर कोई आप सवाल जवाब हुए तो आप संजय कुमार जी बता रहा है ये शू थे सीधो आप सवाल जवाब कर सको ले सको। ये वास्ते आप इतना दूरभाष नंबर ऐसे तो संगनो ध्यान में है, फिर भी हूँ एक बार बता दो 02992254202। ये मैं सीधी बात कर और संजय कुमार जी से आप कोई भी खेत से संबंधित कोई भी सवाल जवाब है तो ले सको। संजय कुमार जी आप बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: देखो संजय कुमार जी के गर्मी तो आप कहने के प्रचंड रूप बता रही है, साथ ही साथ में आंधी भी खेत और मीनों काफी लोगों और आज उबड़ा बीजा उड़ा दिया, पत्रा उड़ गया, काफी नुकसान हुए हुए। तो पहली बात तो आप एक ही बात करो कि भैया आप ध्यान रखो, आपने टाबरों ध्यान रखो, पशुधन ध्यान रखो और साथ ही साथ आप जो भी खेत और मीनों संपत्ति है वो ध्यान रखो। प्राकृतिक है प्रकृति रो तो भाई देखो मैं और भी जब मौसम विभाग रहो आप और समय समय में आपकी सूचना दे उम्मीद अनुसार तैयारी रखो। बीच में संजय जी देखो के गर्मी पड़ रही है, ये समय महीने में हो रहे खेत और मीनों जो भी किसान भाई है उम्र वास्ते की काम होना चाहिए ताकि वो सुविधा से कर सके और आप विभाग में वो मदद कर सके जो कोई भी योजना है बीजी है तो उसके बारे में मोर भाई ने बताओ।
6: सभी किसान भाइयों को राम राम। अब जो जून का जो महीना चल रहा है इसमें जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है वहाँ पे अब मूंगफली की बुआई भी चालू होने वाली है, लेकिन जहाँ पे वर्षा आधारित जो भी खेती होती है जैसे बाजरा है ग्वार है वो खेती होती है तो वो उससे पहले जो कृषि कार्य है जो किसान भाई हैं वो कर सकते हैं। जैसे अब ये जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है तो आप क्या है कि गहरी जुताई कर सकते हैं। तो आपके जो आने वाली जो आप उसमें फसल बोएंगे तो उसमें जो ज़मीन में जो भी घास के जो खरपतवार के जो बीज हैं कीटाणु हैं और जो भी कीट हैं वो क्या है गहरी जुताई से जब ज़मीन पलटते हैं अपने पलटने वाले हल से तो उसमें वो ऊपर आ जाते हैं तो इस गर्मी में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप जब भी आगे कोई फसल बोओगे बाजरा ग्वार या जो भी फसलें हैं तो उनमें क्या है कि आपको इन समस्याओं का कम से कम सामना करना पड़ेगा।
5: बिल्कुल आपकी बात है सही है कि भाई गहरी जुताई सो कई समस्याओं के निदान भी हो जाओ। बीजे में देखो कि कई प्रकार जो खेत में नुकसान पहुंचाने वाला जीव जंतु भी हो बीजे में गर्मी में मर जाए। बीजे में एक बात और भी है कि आप जो गहरी जुताई की बात करिए एक साथ साथ में कोई जो भाई आप योगदान की में रुचि रखते हुए या उन्हें करनी हुए तो ये समय में अगर वे कोई काम कर सके जो कोई गड्ढा खोदन बिजुर्ग क्योंकि देखो वे में भी तो गहराई में कई प्रकार जीव हुए जो वहाँ पर छोटे छोटे पौधों को नुकसान पहुँचा हुई तो अगर उदान की में अगर कोई रुचि रखते हैं तो वो ये समय में गड्ढा वगैरह कहीं खोज सके।
6: हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसलमेर जिले के हिसाब से यहाँ पे दो ध्यान की फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जिसमें खजूर और अनार है। तो आप अगर खजूर और अनार के बगीचे लगाना चाहते हैं अगर उस पर सब्सिडी विभाग द्वारा भी दी जा रही है, उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है अनार और खजूर के पौधों पर तो उनमें भी आप जो राज किसान साथी पोर्टल है कृषि विभाग का उसके थ्रू आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आपको उसमें सब्सिडी भी मिलेगी। और अगर मान लो आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो और सीधा अपने स्तर पे अनार और खजूर का बगीचा लगाना चाहते हैं, तो ये जो जून का महीना है ये सबसे उपयुक्त सीजन है, क्योंकि मानसून भी थोड़े दिन में आने वाला है, तो उससे पहले आप जो खड्डे वगैरह हैं वो खोद के रख देवें और उनकी जो मिट्टी है उनको थोड़ा साइड में रख देवें। खड्डे खोदेंगे तो आप उसमें क्या है कि जो जीव जंतु हैं तो वो भी उसमें नष्ट हो जाएंगे। तो आप जब मानसून सीजन आएगा उसके बाद में आप उसमें जो भी पौधे वगैरह हैं वो आप लगा सकते हैं।
5: तो देखो बेटों के ये समय रमीनो खेत रमीनो, एक तो संजय जी बताए कि गहरी जुताई करनी है बीजे में, अगर कोई उदान की महीनों कोई रुचि रखता है तो ये समय में वो गड्ढा खोद सके ताकि जो कोई भी कोईड़ा परजीवी बीजा है जो आप नुकसान पहुंचा हुए तो उम्र ये महीनों खत्म हो जाए। बीच में एक बात और भी है कि हम आप जो बातचीत कर रहे हूँ इतने एक मोटी समस्या है दीमक री जैसे न मोहरे आला भाई के उदय, तो ये रो निस्तारण भी जो कौकर अगर कोई करना चाहे मोहर किशन भाई तो सहज तरीके से कौकर कर सके, क्योंकि उदय समस्या बहुत ज्यादा है देखने मिल रही है, तो ये बात है कौकर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके।
6: दीमक इस जो ये जो सीजन चल रहा है इस सीजन की सबसे बड़ी समस्या है। एक मैं दीमक के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई सभी यही सोचते हैं कि भाई दीमक है वो क्या है कि जो जड़ है या कोई भी जो खेत में अपने अवशेष पड़ा है अगर वो उसको खा जाती है, लेकिन वो उसको तभी खाएगी जब वो मतलब उसके वो जिंदा नहीं होगा। अगर मान लो वो जड़ में अगर अपने बोलते हैं कि भाई जड़ में दीमक लग गई तो वो जड़ में दीमक जड़ में नहीं लगती, पहले उसमें कोई ना कोई आपके फंगस से कोई ना कोई उसमें रोग होगा, जड़ खत्म होगी, उसके बाद में खत्म होने के बाद में जड़ जब निर्जीव हो जाएगी तब उसके अंदर दीमक लगती है। तो दीमक की अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे बड़ी है कि भी अपने जो भी पिछले जो भी सीजन की फसल है अपने काटते हैं, काटने के बाद में उसका अवशेष अगर आपके दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा है तो या तो आप उसको जो भी अपने तवियां हैं उनसे आप उनको या तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो ताकि वो आसानी से ज़मीन में मिट्टी में मिल जाए, ताकि उनका अवशेष थोड़े लंबे समय तक ज़मीन में ना रहे। अगर कोई भी अवशेष फसल का है जैसे सरसों है रायड़ा है उसका अवशेष अपने मान लो ऊपर ऊपर से सरसों काट लेते हैं नीचे खूब उसमें अवशेष बच जाता है, तो वो जब बचा हुआ अवशेष ज़मीन में पड़ा रहता है बहुत टाइम तक गलता नहीं है तो उसके अंदर दीमक की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, उस खेत में दीमक की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप सबसे आपका बढ़िया है कि कोई भी फसल बोएं तो उसका बीज उपचार करके ही उस फसल को बोएं, जिसके अपने को बोलते हैं बीज का टीका। बीज अपने बाजार में आते हैं, अगर अपने मान लो बाजार का बीज लेके आते हैं तो लगभग जो बाजार में है वो उपचारित बीज आता है, उसमें उपचार करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर अपने कोई घर का देसी बीज बो रहे हैं तो उसमें उपचारित करना अपना सबसे पहला जो कदम है वो पहला स्टेप है जो वो होना चाहिए। उसके बाद में अगर मान लो खड़ी फसल है उसमें दीमक आती है तो उसमें अपने कुछ रासायनिक दवाइयां हैं जैसे फिप्रोनिल है तो उनका अपने मिट्टी के अंदर मिलाकर उनको दवा को छिड़केंगे, ऊपर से फुहारे वगैरह है जो पानी चला देंगे तो उससे दीमक का कंट्रोल हो जाएगा।
5: तो देखो भेड़ो के कई चीजें ऐडे होया करे कि जो को अपन आज जो समय है विज्ञान युग है, वैज्ञानिक तरीके से अगर आप सोचो जो अपन संजय जी बताए कि भाई आप जो को भी मेरी फसल जो कचरो बचोड़े हुए ना ज्यादा समय तक एक जगह माथे भेड़ नहीं रखो वो निस्तारण जितो जल्दी हो सके तो वो सदीमक माथे भी आप काफी प्रभावी कदम हो सके। बीजे में संजय जी देखो कि कई बार देखो कि जो आप खेजड़े है लोग बाग बड़े खेजड़े लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आना तो अगर दीमक रो प्रभाव देखो तो खेजड़िया माथे हो रही है, तो ये रो के कारण है खेजड़े कोकर बच सके, क्यों खेजड़िया देख रहे हो तो बिल्कुल सूख रही है, कहीं बीजा पौधा भी सूख रहा है लेकिन खेजड़ी रो ज्यादा असर हो रही है, तो अगर खेजड़ी ना अगर कोई बचाना चाहे तो वही दीमक रोग की उपचार कर सके।
6: इसमें जैसे भी सभी जो उद्यान की फसलें हैं या जो अपनी जो भी अपने खेत में अपने पेड़ लगा रखे हैं उनमें भी दीमक की एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे शीशम है अपने बोलते हैं नीम में भी दीमक नहीं लगती लेकिन आज के समय में नीम में भी दीमक लगने
5: लग रही है जा रही बिल्कुल सही बात,
6: और खेजड़ी वगैरह में बहुत ज्यादा लगती है। तो इसमें अपने यही कर सकते हैं कि भी जो ये जो मानसून सीजन है इससे पहले अपने एक कॉपर सल्फेट आता है बाजार में मिल जाएगा आपको नीला थोता के नाम से, वो चूना और पानी इन तीनों को मिला के अपने एक कोई भी ड्रम है उसमें घोल लेवें तो उसमें वो घोल एक दिन तक रात रात रखें उसको मिला के, अगले दिन उनमें क्या करें कि आप कोई बाल्टी वगैरह है उसमें डाल के जो पौधे के जहां तक अपनी हाइट है, अपना जो भी हाइट है उस हाइट तक पौधे के तने पर उसका लेप कर देंगे, चारों तरफ अपने लेप कर देंगे तो जो भी फंगस वगैरह है तो उससे जो बाहरी छाल है उस खेजड़ी हो चाहे कोई भी और पौधे हैं उनकी वो छाल है वो गलेगी नहीं, वो अगर नहीं गलेगी तो उसमें क्या है दीमक नहीं लगेगी, तो ये एक सबसे प्रभावी उपचार है दीमक।
5: बिल्कुल आप जो को बताए और बैठा सुन रहे हैं ये बात रोशिश्तियों नक्शे अपने एक बातचीत करी कि भाई अपो कभी जो हमें देखो तैयारी तो है जागी फसल की तैयारी तो अपन करनी चाहिए और बीज उपचार की बात करी कि बाजार से लासो तो बीज उपचार हो रहा से, लेकिन कई भाई एड़ा है जो को बीज न संभाल रखे आप रहे तो वो बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करना सरल तरीको सहज तरीको की है क्योंकि कईयों करने तो डोलते है या नहीं है या आप और कोई देसी तरीको है तो बीजोपचार कोकर करे की करे। वैसे तो मोरा भाई है जो को बड़ा होशियार है, हमें आजकल किसान सब होशियार है समय समय माथे नवाचार कर रहे हैं उन्होंने सब जानकारी, फिर भी जो को भाई एडा है दूर दराज बैठा है आप बीज बीजो उपयोग में ली तो उन्होंने बीजोपचार करने वास्ते की करना चाहिए।
6: बीज उपचार में एक तकनीक होती है जैसे FIR बोलते हैं उसको, उसमें तीन तरीके से अपने बीज को उपचार करेंगे जिसमें सबसे पहले FIR में F का मतलब है फंजीसाइड जो भी फफूंदनाशी है उससे अपने बीज को उपचार करेंगे, जिसमें अपने को थायरम है कैप्टन है इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से है। ये वो दवाइयाँ हैं जो मतलब बाजार में भी आपको आसानी से मिल जाएंगी, हर जो खाद बीज विक्रेता है उसके पास आसानी से उपलब्ध है ये दवाएं। और दूसरा उसमें आता है आई है इंसेक्टिसाइड जो भी कीटनाशी है उसमें अपने कीटनाशी से करने के लिए थायोमेथोक्साम है वो भी बाजार में आसानी से उपलब्ध दवा है, तो उससे भी आप 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसमें या तो भी एक कोई भी जो भी डिब्बा है या कोई भी ड्रम वगैरह है छोटा उसमें आप उसका घोल बना लें, बाद में उसको बीज को एक चादर पे फैला कर उस पर उसका स्प्रे कर देवें और बाद में उसको थोड़ी देर धूप में रख के फिर उसकी मतलब हाथों हाथ उसकी बुआई कर देवें। तो दो तरीके, तो इसमें F का कवकनाशी हो गया, I का इंसेक्टिसाइड जो भी कीटनाशी है उससे कर सकते हैं, तीसरा है जैव उपचार जिसे राइजोबियम कहते हैं, जो भी मान लो फसलें हैं अपने अपने यूरिया डालते हैं, यूरिया मेनली जो है जो पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व है, तो जो भी अपने जैव उपचार करेंगे राइजोबियम से वो क्या है कि छोटे जीवाणु हैं जो भी जड़ों में क्या करते हैं कि गांठें विकसित करते हैं, तो गांठें विकसित करते हैं वो गांठें क्या करती हैं पर्यावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देती है, तो उसमें क्या है कि अपने अगर उससे जैव उपचार भी उसके साथ साथ करेंगे फंजीसाइड और जो इंसेक्टिसाइड उसके साथ साथ तो अपने को जो खाद है उसकी भी मतलब बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, तो अपने फसल की जो वृद्धि है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगी।

0: देखो बेटा, ओके, आज उस समय आपको पहले ही बात करी हूँ, विज्ञान युग है और अपर कने संसाधन भी है, मोबाइल है, वीजा है, व्हाट्सएप है और सरकार प्रतिनिधि भी है। तो वो सो आप सीधे संपर्क साध सको, घरे बैठुड़ा, खेत में बैठुड़ा, ढोणी में बैठुड़ा, तो नया नया जो को भी चीज है वो सीख ले सको और आप खेत में बढ़िया तरीके से आप अपना खेत सुधार सको। बीजे बात हम आप बात करें कि बीजो उपचार बीजो करना चीजें विषय उदय भी कम संभावना रही और बीजे भी बीमार को नहीं लगे। कई बार देखो है कि वैसे तो खड़ा सीख देखो भाई, तो बुआई बीजी करे बढ़िया खेत में, ट्रैक्टर सुई करे कोई भाई, हाथ सुई छड़ गई और कोई आवड़ कावड़ जाओ क्या करने साधन है तो बुआई रो तरीको कयो ठीक है, एक कतार में हुए ट्रैक्टर हुए हाथ रो छिड़का वाल हुए, क्योंकि देखो कई बार खरपतवार बीजी कई समस्याओं का चले जाओ। तो आज रो समय जो अपने बात घड़ी घड़ा करा कि विज्ञान युग, तो वैज्ञानिक तरीको की है बुआई रो।
1: अब बुआई का आज के पुराने समय में क्या होता था कि बैलों से लगभग जमीन की जो बुआई वगैरह है वो बैलों से होती थी, ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह, ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं होती थी। उस टाइम सबसे ज़्यादा उपयुक्त यही था कि भी अगर मान लो भी अपने जमीन में पानी लगा रखा है, उसके बाद में अपने को उस सोविंग कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, ज़्यादा टाइम लगता था, जमीन में जो नमी है वो नमी नहीं रह पाती थी इतने दिनों तक, तो उसके लिए वो क्या है, छिड़कवा विधि से बीज को बोते थे। लेकिन आज के समय में लगभग हर जगह हर किसान के पास ट्रैक्टर उपलब्ध है, मशीनरी भी है, सीड ड्रिल आती है आजकल, हर फसल के लिए अलग अलग सीड ड्रिल हैं, उसमें फर्टिलाइजर का भी साथ में आप उसकी बुआई कर सकते हैं। तो उसमें पंक्तियों से बुआई होती है जो मतलब बहुत ही अपने अगर उसमें बाद में निराई गुड़ाई करते हैं तो भी अपने को उसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर निराई गुड़ाई अपने मजदूरों से नहीं करवा कर अपने कोई कृषि यंत्रों से भी करते हैं तो भी उसमें क्या है कि अपने को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, कतार से कतार की एक दूरी फिक्स रहती है उसमें, तो उसमें क्या है फसलें नष्ट होने का चांस बहुत कम रहता है, तो जिससे अपने को बुआई में उसके जो बुआई के जो बाद की क्रियाएं हैं खरपतवार निकालने वगैरह की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है।
0: तो बिल्कुल आपरी बात मोरा भाई सुन रहा है, ये बात अमल भी कर से। और बीजे में देखो जिंदगी आप बातचीत कर रहे हो कि बीजरी बीजरी बात करो यार, वीर बांधे अपन पहले बात करें उदय बीजरी भाई खेत में मिलाए भी देवनो चीजें, कई बार रेडी हो जाए कोई पराली है जो खड़ी हुई जावे पड़ी रही और लोग बाग वो आग भी लगाए दे, तो उसे कई बार रेडो आग को या करके पर्यावरण खराब हुई और आग जनित घटना हुई जावे। तो पराली जो है वीरो मुख्य की तरीको है अभी निस्तारण हो, तो एक तो भाई खेत में मिलावे हम कह रहे घनी है या कोई कोमरी कोनी, तो पराली जो निस्तारण हो आज के समय में वैज्ञानिक तरीकों की।
1: ये समस्या सबसे ज़्यादा जो नहरी इलाका है जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह बहुत ज़्यादा है, उनमें जो भी मान लो फसल के जो बाद का अवशेष बचता है, जैसे पराली है जो धान का अवशेष है या गेहूं का अवशेष अपने मान सकते हैं, या जो भी सरसों का अवशेष जो पीछे बचता है, उसमें अपने ये कर सकते हैं कि भी जैसे अपने यहाँ पे इसमें सब्सिडी तो नहीं मिलती है लेकिन एक सुपर सीडर आता है, उस पे क्या है कि उससे अपने को जो फसल खड़ी है, जो भी अपने फसल की कटाई कर ली पीछे अवशेष बचा हुआ है जिसको अपने संरक्षित खेती भी बोलते हैं, तो उसमें अपने को सीधी जो फसल कटने के बाद में जब भी आगे वाला सीजन आएगा तो उसमें अपने को कोई भी जो भी प्लाऊ वगैरह से या कल्टीवेटर वगैरह से जमीन की जुताई नहीं करनी है, अपने को डायरेक्ट सुपर सीडर से उसमें बीज डाल के जो भी अपने उर्वरक हैं वो डाल के अपने सीधी डायरेक्ट उसमें बुआई कर सकते हैं, जिससे क्या है कि अपने की जो लागत है जो अपने जो उसकी जुताई करने की वो लागत भी अपने को नहीं आएगी और अपने को जो आगे जो अपने फसल में पानी देंगे वो भी उसमें पानी की क्या है जरूरत बहुत ज़्यादा कम रहेगी, तो उसमें बीच में जो अवशेष पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से जो नमी है वो भूमि में संरक्षित रहेगी, नमी उड़ेगी नहीं, तो अपने उसमें पानी की भी बचत होगी और उपज ज़्यादा होगी और किसान की आमदनी भी इससे बढ़ेगी।
0: बहुत ही बढ़िया। और देखो संजय जी के अब मैं बातचीत थोड़ा कर ही रहा हूँ और हड़ो एक अड़ो सुनने भी आ रही है कि भाई सरकारी थोड़ा जो को तंत्र है वे माध्यम से किसानों ने मोरे एक नई जागरूकता महीनों के भाई खेत बचाओ, तो एक की खेत बचाओ कोकर बचाओ है खेत नो की करनो है ये में की और भाई ने लाभ उसे की तरीके से खेत बचे थोड़ी सी अगर आप ये माथे मोटा मोटी रूप से बातचीत करता हूँ। किसान भाई है जो पहले से तैयार रहे, जब भी विभागीय लोग जो आवे तो उसे और भी ज्यादा होना ये री जानकारी मिल सके।
1: केंद्र सरकार द्वारा जो माननीय

0: कृषि मंत्री हैं शिवराज जी चौहान, उन्होंने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जो 1 जून से 30 जून तक पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जाएगा। सभी राज्य हैं उसको आयोजित करेंगे। ये अपने यहाँ पर भी आयोजित हो रहा है 1 जून से 30 जून के बीच में, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो आपके ग्राम पंचायत में आएंगे। तो जिसमें इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है भी जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ताकि आप उर्वरक का यूज है जो खेती अपने खेत हैं उनको अपने बचा पाएं, उनकी जो उर्वरा शक्ति है उसको बचा पाएं। वो जिसमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसमें जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, वर्मी कंपोस्ट जो खाद है अपने वो भी उसमें तैयार कैसे करें, हरी खाद है उसका प्रयोग अपने कैसे करें, उसका बीज आपको कहाँ से उपलब्ध होगा, उसमें कौन सी फसल आप बो सकते हैं, जैव उर्वरक है जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, उनका उपयोग आप उनसे बीज उपचार है वो कैसे करें। और उसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि जो मिट्टी परीक्षण है, जो अपने मृदा नमूना कार्ड है जो भी जारी किए जाते हैं, तो उसमें आप किसान भाइयों को ये जागरूक किया जाएगा इसमें कि वो जो मिट्टी परीक्षण कार्ड जो बनता है उनका, उसका अनुन्नयन करें, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें DAP की जिस हिसाब से अब थोड़ी कमी है, तो उसके हिसाब से अपने DAP की कमी के हिसाब से अपने DAP की जगह 3 बैग SSP और 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP में अपने को सिर्फ 2 ही पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मुख्य रूप से हैं। अगर अपने SSP और यूरिया है उनका एक साथ प्रयोग करेंगे तो अपने को नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर भी मिलेगा। और इसमें जल संरक्षण की जो भी तकनीकें हैं जिन पे विभाग द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें फार्म पोन्ड है, डिग्गी है, ड्रिप से सिंचाई है, स्प्रिंकलर से सिंचाई है, इनको भी प्रोत्साहन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगर वो सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन करवाए जाएंगे ताकि उनको सब्सिडी भी मिले, उसके साथ साथ वो उसमें खेती में उसका उपयोग करके उससे आमदनी बढ़ा सके।
1: तो भाई डॉ जो को भी सुन रहे हो, मैं संजय जी बता दियो कि 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान नहीं श्री गणेश हो रही है, कृषि मंत्रालय सफरा जो को मंत्री जी है माध्यम से हो रही है। तो ये मैं अपनों बड़े हिस्सों लेवन और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है। और वैसे तो किशन भाई सब समझदार है, फिर भी आज जो को युग है वो तकनीकी युग रही, नई नई चीजों आ रहे हैं, और आप कौकर प्रयोग करो, उपयोग करो, आप मृदा है और स्वास्थ्य कौकर बढ़िया हुए। तो ये में मृदा रो जो कुछ स्वास्थ्य है वो भी उत्तम रहे, उगेर वास्ते भी कुछ ना कुछ ये में ज्यादा जोर दियो जा सके।
0: हाँ, इसमें जो भी अपने जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है जिसको केंचुआ खाद भी बोलते हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या जो सोइल हेल्थ कार्ड जो बनता है, मृदा जो नमूना कार्ड है, तो उसके आधार पे जो भी उसमें अपने को पोषक तत्व की कमी है अपने वो ही पोषक तत्व डालें, जिससे अपने क्या जेब का खर्चा भी उससे कम होगा। जैसे अब DAP है, DAP का मतलब बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इस पे सब्सिडी भी बहुत ज्यादा दी जा रही है, तो उसकी थोड़ी बहुत कमी भी है, उसकी जगह अपने इन दूसरी चीजों का SSP है उसके साथ यूरिया का भी यूज कर सकते हैं, जिसको अपने को DAP के जो 2 पोषक तत्व है उनके अलावा भी अपने को जो अन्य पोषक तत्व है वो भी फसलों को मिलेंगे। ये मुख्य रूप से ये जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उनमें SSP मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, और आपको जो ऊपर से जो अन्य उर्वरक हैं जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी आपको ज्यादा देने नहीं पड़ेंगे, इस SSP से वो सारे आपके कवर लगभग हो जाएंगे।
1: तो देखो बैठो के सब चीजों री बढ़िया तरीके से परी सरकार अपन माथे ध्यान दे रही है, अपन भी थोड़ो सी की है बढ़ चढ़ हिस्सों लेना पड़ से क्या करें के बेपग अपन नहीं भरना पड़ से। दूसरी देखो के आप जो को बात कर रहे हो खेत बचाओ नहीं, मोरे थे एक बहुत मोटी पद्धति है खड़ीन पद्धति, तो खड़ी पद्धति रे मैंने तो आप देखो तो पर्यावरण अनुकूलित खेती हुई उम्र वास्ते भी ये में कुछ नई चीजें और समावेश हो सके, क्योंकि खड़ी निर्व्यवस्था बहुत मोटी है। तो जो कोई मारा खड़ी जाना भाई सुन रहा है उम्र वास्ते है कितनी लाभदायक है खेत बचाओ वाली।
0: खड़ीन में मुख्य रूप से इस सीजन में जो भी खरीफ सीजन है इसमें ज्यादा बुआई नहीं हो पाती, क्योंकि बारिश बरसात का सीजन होता है, तो उसमें लगभग जो वर्षा जल का संचय है वो खड़ीन में इस सीजन में किया जाता है, ताकि जो अगली जो रबी की फसलें हैं जिसमें मुख्य रूप से खड़ीन में गेहूं, चना, जो, सरसों, ये मुख्य रूप से ली जाती हैं, उनमें अगर वो उसमें लगभग खड़ीन में नेचुरल रूप से खेती की जाती है, लेकिन अपने थोड़े बहुत अगर उसमें अपने फर्टिलाइजर वगैरह हैं, उर्वरक वगैरह हैं, वो अगर आप उसमें अपने नहीं डाल के, उसमें अगर जीवामृत हैं, बीजामृत हैं, बीजामृत से अगर बीज उपचार करेंगे, जीवामृत से ऊपर से उसमें छिड़काव करेंगे, और उसमें अगर वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद है वो डालेंगे, या जो इस सीजन में है हरी खाद है जिसमें मुख्य रूप से डेंसा है, तो उसका बीज भी अब विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा इस सीजन में थोड़े दिनों में, तो वो आप बुआई करके, तो उससे क्या है कि आपकी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ेगी और उसमें जो फसलें होंगी वो आपकी और ज्यादा बढ़िया होंगी।
1: बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक बात और भी है कि हाँ, एक मोटा मोटी समस्या जो देखना आ रही है कि मोरा किशन भाई जो वो ई मित्र माथे जा रहा है वो फॉर्म कौन भरिजता, जो हाँ आप बात करें कि भाई कोई डिग्गी रो है या कोई फुहारे रो है या कोई पौन निर्माण रो है, तो वो कोई ये मीना शायद लारे सो कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो थोड़ी कोई जानकारी दिला सको मोर भाई ना।
0: इसमें मुख्य रूप से जो कृषि विभाग द्वारा जो भी योजनाएं हैं उन पर जो अनुदान दिया जाता है उसमें मुख्य रूप से कृषि यंत्र हैं जिसके आवेदन अभी बंद हैं, उसके आवेदन अभी चालू नहीं हुए हैं, उसके अलावा जो भी सिंचाई पाइपलाइन की जो भी योजना है वो उसके आवेदन अभी चालू हैं, तारबंदी जो खेतों की तारबंदी करते हैं अपने उसकी भी योजना है, उसके भी आवेदन अभी चालू हैं, फार्म पोंड है जिसमें जिसको खेत लाई बोलते हैं जो वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाई जाती है, तो उसके भी आवेदन आप अभी कर सकते हैं, और एक गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना भी है जिसमें जो जिनके पास गोवंश है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं, तो वो उसे वर्मी कंपोस्ट खाद बना के अपने खेतों में यूज कर सकते हैं जिसपे 10,000 रुपये विभाग द्वारा आपको सब्सिडी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, आप जो इतनी बात करें इसमें एक डिग्गी के बारे में भी लोग बात कर रहा था कि तो डिग्गी होना बंद है या चालू है, डिग्गी का भी फॉर्म भरिज कौन रहा था?
0: हाँ, डिग्गी के आवेदन अभी बंद हैं, तो उसमें डिग्गी लगभग यहाँ नहरी क्षेत्र में बनती है, तो उसमें उसके आवेदन अभी बंद हैं, जब भी चालू होंगे तो किसान भाइयों को जरूर इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा।
1: तो देखो भाइयों के कुछ चीजों और है विभाग है जो थोड़ा सी बढ़िया तरीके से करता है, तो ये वास्ते थोड़ा समय है लार चालू भी हो जाए सर, जो चालू होता है संजय जी बताए हुए कि भाई चालू है। विजय सिंह जी को आप बातचीत कर रहे हो कि कई बार मिट्टी पौड़ी की जाँच की बात करें तो मेरे मीनो चुको भाई करा लिया उन्होंने तो जानकारी है, फिर भी कुछ लोग अपनी मृदा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग है, तो ईयर में ये कितना पैसा लगे अगर कोई मिट्टी पौड़ी जाँच भी कराओगे थोड़े विभाग के माध्यम से?
0: अब जैसे हमारे को हर सीजन में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लक्ष्य भी दिए जाते हैं, हम किसानों को जागरूक भी करते हैं कि भी वो समय किस स्तर पर भी जो भी मृदा नमूने हैं वो इकट्ठे करके हमारे यहाँ विभाग द्वारा लेकर आए, तो अब आप उसके लिए भी आपको सैंपल जो मिट्टी का नमूना है वो आपको कैसे लेना है, तो उसमें आप जो विभाग के जो भी हमारे कृषि पर्यवेक्षक है ग्राम पंचायत स्तर पे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, रामगढ़ रोड पे हमारा कृषि विभाग है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, तो उसमें आपको बताया जाएगा भी नमूना कैसे लेना है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से नमूना लेके आते हैं तो आपसे 5 रुपये फीस ली जाती है, उसके आधार पर आपका जो भी सोयल हेल्थ कार्ड है वो बना के दिया जाता है।
1: बहुत ही बढ़िया है। और संजय जी आज आप पधारे यार, बीजेम सबसे छोटी बात करें कि भी 5 रुपये में खाली थो कार्ड बोल रहे भाइयों ने बनाए दे दे, तो बहुत अच्छी बात है। जो को भी सुन रहा है ये रो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लाभ लो और मृदा रहे स्वास्थ्य प्रति सजगता रहो, क्योंकि आप भी अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहे तो मिट्टी जो पहले जरूरी है, किसान वास्ते तो बहुत मोटी बात है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सार
0: राम राम सर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन, राग है रागेश्री।

किशोरी अमोन करके इस गायन के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम था सागर। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। संगीतकार थे आर डी बर्मन। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मौसम से, जिसे गा रहे हैं लता मंगेशकर। संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: क्या?
1: कुछ नहीं, ये तस्वीर किसकी है?
0: एक लड़की है
2: जिसे मैं कई बार सपनों में देख चुका हूँ और इतनी बार देख चुका हूँ कि उसका चेहरा मेरी आंखों में समा गया।
0: बहुत लड़कियां मिली, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
1: क्या मैं देख सकती हूँ?
0: एक शर्त।
1: वो क्या?
0: भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे मिल जाए।

फिल्म का नाम था मेरे जीवन साथी। गायक कलाकार थे किशोर कुमार। गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। अगला गीत गा रही हैं शोभा गोटू, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

कर ले झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही।

फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अगला गीत गा रही आशा भोसले, फिल्म लीडर के लिए, जिसे संगीत दिया है नौशाद ने।

Maggi. Oh, Maggi, le Maggi. Oh, Maggi, le Maggi.

फिल्म लीडर के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। आइए सुनते हैं चंदन दास की गाई कुछ गजलें। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

जब मेरी हकीकत जा जा कर, जब मेरी हकीकत जा जा कर, उनको जो सुनाई लोगों ने, कुछ सच भी कहा कुछ झूठ कहा, कुछ

रुखसत के वक्त मुझको ना समझाइए जाना, रुखसत के

चंदन दास की गाई इस गज़ल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM 101.8 MHz पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनाधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
2: डिसिस्ट फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट ऑन देम।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवम्बर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के

0: जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म ममता में ये थी लता मंगेशकर, संगीत दिया था रोशन ने। मेरे हुजूर यह फिल्म का नाम, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

चमन मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर रुख से।

गायिका थी आशा भोसले, संगीतकार थे हयाम, फिल्म का नाम था उमराव जान। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, राजस्थानी लोक संगीत में ही सुनते हैं प्रभु राम पार्टी के गाए कुछ लोक भजन और लोकगीत।

इसी के साथ आज का राजस्थानी लोक संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से, माफ़ी जयपुर जैसलमेर केंद्र से।

राजस्थान में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा अलवर जिला अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक किलों के लिए राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। महाभारत कालीन मत्स्य देश के रूप में प्रसिद्ध यह शहर अपनी अनूठी विरासत, कला और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान में अलवर अंचल की विशिष्ट परंपरा रही है। अलवर न केवल शासकों की, विद्वानों की, अपितु पौराणिक ऋषियों की भी तपोभूमि रहा है। वैदिक ऋषियों मांडव्य, पाराशर, अंगिरा, लोमश इत्यादि ऋषियों के मंत्रों से अनुगूंजित यह भूमि सदैव देववाणी की पोषक रही है। अलवर क्षेत्र का लोक संगीत यहाँ की समृद्ध संस्कृति का मुख्य आधार है। यह संगीत स्थानीय इतिहास, आध्यात्म

0: आत्मिकता और सामाजिक समरसता को जीवंत रखता है। लोक संगीत व वाद्य यंत्रों का यह संगम स्थानीय त्योहारों में एक नई उमंग भरता है। अलवर की थानागाजी तहसील के आसपास नेहरा गीत, जिन्हें स्थानीय भाषा में नवेदा, नेहरा, नेड़ा भी कहा जाता है, ये गीत विशेष रूप से गुर्जर, मीणा और अन्य ग्रामीण समुदायों में गाए जाते हैं। थानागाजी के क्षेत्रीय लोकगीतों में नेहरा का एक प्रमुख स्थान है। ये मुख्य रूप से रसिया, धव या दंगल की श्रेणी में गाए जाते हैं। इनमें स्थानीय वीर गाथाएं और स्थानीय लोक कथाओं का वर्णन होता है। आइए सुनते हैं धवले राम मीणा और साथियों के द्वारा गाया गया ये शबरी प्रसंग।
1: भाई सबर भूप के धाम जन्म सबरी ने लियो और बालापन से लगन ध्यान भक्ति में दियो। राजा सुनो बोली रानी सबरी होती आई सियानी। आचो ठोर ठिकानो हेरा कर दे भाव पाड़ दे फेरा। खबर ये सबरी ने सुन पाई भाजी मैया के ढंग आई। मैया मैं समझाऊं तो पूछिए नहीं सासरो मोकू। ये सासु ससुर पति पिता मात सब स्वार्थ को संसार और सत्य भजन भगवान को जैसे बेड़ा हो जाए पार। के बैठी बैठी फेरूंगी अरे बैठी बैठी फेरूंगी बनी में।

सबरी तो नाटी खणी वाको बाबुल मैन्यो नाए और करी सगाई तुरत ही देत भ्याव दी और पुआए शादी केंद्र पुने बंदोबस्त करवाए पीने के हित मदरा के खड़ा भराए भोजन के लिए भैंसा बकरा मंगवाए मृग सुअर स्यार खरगोश बहुत बंदवाए सबरी बोली सुन मैं तारी मोकू बात बता दे सारी मारे घर के पछवाड़े में कैसे बंदे पशु बाड़े में सुन कर के सबरी की बाणी नो समझा बेला गी रानी ये बाले के बने पिरानी इनकी दो दिन की जिंदगानी तेरो भ्याव करेंगा स्याणी और इनकी बने रसोई वातन मर जावे ये प्राणी सबरी बोली सुन महतारी सबरी बोली सुन के बानी बाबुल क्यों बन रहे अज्ञानी मैंने मना करी नहीं मानी और मेरे पीछे मैया पर था मरे सैकड़ों प्राणी ऐसो भाव मोए ना चाहिए ऐसे मेहतारी से खइए मैंने तजे तजो कुटम परिवार त्याग दिए बाप और भैया मोए

जल को ले लिए पंत रटे भगवंत हेत रघुबर से नहीं होय गुरु बिन ज्ञान सोच रही मन में कोई संत बनानो चाहिए गुरु विपन में संतन दिन सबरी घूमत फिरे अकेली कर जोर कहे महाराज बना लो चेली भीलनी अपनी जात बतावे जब संतन को गुस्सा आवे तू दिन उठ के पाप कमावे तो कुचेली कौन बनावे साची खेकुन ने भैताई मारी धूनी पे क्यों आई जाने तू कहना की नहीं तो कुतनक शर्म नहीं आई कुटिया पैसू पहना पड़ जा और अशुभ भेष खुल रहे केस तू न्यासू लम्बी पड़ जा बाकी भारी करी पिटाई और मार पीट करके संतन ने सबरी दूर भगाई ठाडी ठाडी सोचे मन में मेरा कौन धनिया बन में मैं घर को उल्टी नहीं जाऊं ये संतन को किसा मनाऊं हे रघुबीर आसरो तेरा बेड़ा पार लगा दे मेरो मिल तजे जगत के भोग सता दे धरो तुम्हारो ध्यान और सबरी को बना दे सबर जगत पति दीन बन।

Tum kehra re thari jatam, thari jatam.

रक्षा करना कोई हम ना तू तेरो, रक्षा करना कोई हम ना तू तेरो। रक्षा करना कोई हम

लोक गीतों की कड़ी में अब बारी आती है मीणावाटी गीतों की। ये गीत अलवर, थानागाजी, नारायणपुर के आसपास के इलाकों में बहुत प्रिय हैं, जो स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। मीणावाटी गीत यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। ये गीत मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं ग्राम बाछड़ी तहसील थानागाजी की महिलाओं द्वारा गाया गया यह सुंदर मीणावाटी लोकगीत।

मीणावाटी लोकगीतों में प्रमुख रूप से गाए जाने वाले गीत हैं तेल या रसिया गीत। ऊंची आवाज में गाए जाने वाले इन गीतों का उपयोग मुख्य रूप से संदेश भेजने या देवी देवताओं को रिझाने के लिए किया जाता है। अगले आते हैं पढ़वाड़ा गीत, जो कि अलवर क्षेत्र के मीणा समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है। ये कथात्मक गीत होते हैं जो स्थानीय इतिहास, वीरों की गाथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है। मीणावाटी गीतों में ही अपनी एक अलग पहचान रखते हैं हास्य और व्यंग गीत। इन क्षेत्रों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर आधारित हास्य व व्यंग गीत भी काफी पसंद किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं हीला ख्याल, जो कि मीणा समाज का सबसे प्राचीन और पारंपरिक लोकगीत है। इसे यहाँ के लोग बड़ी ऊंची और लंबी आवाज में गाते हैं, ताकि दूर दूर तक बैठे लोगों तक यह पहुँच सके। राजस्थान में रामजीलाल मीणा और कानाराम थली जैसे कलाकारों ने मीणावाटी गीतों को काफी लोकप्रिय बनाया। इन गीतों के माध्यम से मीणा समाज के गौरवशाली इतिहास और पूर्वजों की गाथाओं का बखान किया जाता है। चले सुनते हैं एक और खूबसूरत सा मीणावाटी लोकगीत।

0: बात हो अलवर के प्रसिद्ध लोकगीतों की तो राज क्षेत्र के लोकगीतों को कैसे भुलाया जा सकता है। अलवर के राज क्षेत्र बहरोर, मुनावर, किशनगढ़बास, कोट कासिम के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से अहीरवाटी और मेवाती लोकगीतों की परंपरा है। यहाँ के प्रमुख गीत स्थानीय मेलों और त्योहारों में बहुत उत्साह के साथ गाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोक नाट्यों और मेलों में अलीबख्श ख्याल और महाभारत से जुड़े प्रसंग ढोला मारू और राजा भर्तरी के गीत भी गाए जाते हैं। चलिए सुनते हैं राज क्षेत्र का यह प्रसिद्ध लोकगीत जिसे गाया है मनु श्रवण और साथियों ने।
1: ए रथोड़ दे कोली इस योद्धा की,

0: इस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत और संगीत परंपराओं में बारी आती है सबसे पहले अली बख्श ख्याल की, जिसे कि अलवर का रम्मत भी कहा जाता है। मुनावर के नवाब अली बख्श द्वारा शुरू की गई यह संगीत शैली में ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो सामाजिक जीवन मूल्यों को दर्शाती है, जो राठी अहिरवाटी बोली में गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा प्रसाद शर्मा और साथियों का सुंदर गाया ये गीत।
1: सो रठी गड़ी से

अहिरवाटी लोकगीत मुख्य रूप से अहिरवाल यादव क्षेत्र में गाए जाते हैं। इन गीतों में यहाँ की संस्कृति, वीरता और लोक कथाओं का चित्रण होता है। ये गीत मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति और वीर रस पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं यहाँ मदन लाल यादव और साथियों द्वारा गाया यह लोकगीत।

0: समय का चक्कर चढ़ासी सुबह गुरुगोरख जी डांटा था उस मसीके दर्शन खातर कद पूरण मलना टा था
1: उस मसीके दर्शन खातर कद पूरण मलना टा था
0: ये धन माया का भरा खजाना ना धन का घाटा था ये चाल पोट में छुरी चली जड़ पूरण मल काटा था
1: चाल पोट में छुरी चली जड़ पूरण मल काटा था
0: समर सुगी सुलेभान ने समर सुलेभान ने करी बेटे की कुर्बानी समय पे प्यारा धोखा दे जा समय बदल जा बाणी रे समय बदल जा।

0: समय के कारण हरिश्चंद्र ने सत भंडार भरे थे। एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं फिरे थे।
1: अरे एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं गिरे थे।
0: लड़का राजा रानी तीनों घर से बाहर करे थे। ये राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे।
1: राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे।
0: भाई समय के कारण हरिश्चंद्र ने भरे भंगी के घर पानी। समय पे प्यारा धोखा समय बदल जा पानी रे। समय बदल जा पानी
1: समय करा दे नरंगे कर ले। समय लावणी जानी समय पे प्यारा धोखा दर दे। समय बदल जा।

श्रोताओं, अलवर की संस्कृति में कुछ क्षेत्रों में ब्रज संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ब्रज लोक संस्कृति से जुड़ा एक लोक भजन हम सुनते हैं, जिसके कलाकार हैं नरसिंह शर्मा और उनके साथी।

बात करें परंपराओं की तो रसिया और बन्ना बन्नी को कैसे भूला जा सकता है। त्योहारों के अवसर पर रसिया गाए जाते हैं जो ब्रज संस्कृति के प्रभाव को दिखाते हैं। चलिए सुनते हैं मामन चंद गौड़ और साथियों की ये मनमोहक प्रस्तुति।

0: अलवर के लोक गीतों की श्रृंखला में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं मेवाती क्षेत्र के लोकगीत। और बात करें यदि यहाँ के लोक गीतों की, तो पहला नाम आता है रतबई गीतों का, जो कि मेवात क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। इसे प्राय वर्षा ऋतु या शाम के समय भपंग वाद्य यंत्र की संगत में गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम प्रसंग और स्थानीय वीर गाथाओं का वर्णन होता है। मेवाती लोकगीतों की आत्मा यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इनमें भपंग और सारंगी सबसे प्रमुख है, जिन्हें मेवात के जोगी बजाने में सिद्ध हस्त होते हैं। इसके अलावा नगाड़ा, खरताल और ढोलक का भी इस्तेमाल होता है। आइए सुनते हैं हम उमर फारूक मेवाती और साथियों के द्वारा गाया गया ये मेवाती लोकगीत।
1: अरा भबूड़ा में आराई हुती दादा जाने बचाई मेरी जान, भबूड़ा में आराई हुती दादा जाने ये दादा हम बे दादा कीरा दादा ओहो दादा से जाने बचाई मेरी जान, बबूड़ा में
2: आई हो दी दादा ये जाने
1: बचाई। अरे घनी सकाली में बुटी मन खुरपो पहनायो,
2: अरे घनी सकाली में बुटी मन खुरपो पहनायो,
1: अरे घनी सकाली में बुटी मन खुरपो पहनायो,
2: अरे घनी सकाली में बुटी मन खुरपो पहनायो।
1: घर में तो जाऊ न्याल को मेरा छुरा बेलायो, रे बबूड़ा में आई होती दादा ये जाने बचाई दादा।

0: खड़िया सुमटकी बड़ीरा माट भी चप्पी
1: खड़िया सुमटकी बड़ीरा माट भी चप्पी
0: मर खड़िया सुमटकी बड़ीरा माट भी चप्पी
1: खड़िया सुमटकी बड़ीरा माट भी चप्पी
2: इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब आपको हम सुनवा रहे हैं गफरुद्दीन मेवाती और साथियों द्वारा गाया गया मेवाती लोकगीत।
3: मेरो नथ को मुवती चमकीरो हो रे दिली जानी, मेरो नथ को मुवती चमकीरो हो रे दिली जानी, तेरी पहरे सुंदरी नार भरनी तेरी पानी।

పచ్చి పూరి పిండో పేరు పూటి గయినారి పచ్చి పూరి

ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ

मेवाती लोक संस्कृति में लोक गाथा एवं किस्सों का भी प्रमुख स्थान है, जिसे शामिल किए बिना लोक गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम अधूरा है। आइए सुनते हैं नूर मोहम्मद मिरासी व साथियों द्वारा गाया लोक गाथा पंडुवन का कड़ा की ये प्रस्तुति। यह मेवात का सबसे प्रसिद्ध लोक महाकाव्य है। प्रसिद्ध शायर साधु अल्लाह द्वारा रचित इस गाथा में महाभारत के पांडवों की कथाओं का मेवाती लोक शैली में वर्णन किया गया है, जिसे स्थानीय जोगी और मिरासी सारंगी की धुन पर गाते हैं।

अरे जाती हरी देखरी नार राजा जान यार जन पूजा के दियो अरे धरो है यार

नाम भी किसको लाता है निकी पिया को ला के जाने कहीं के ले भाई राजा अर्जन ढाट अपना लेके राजा अर्जन निपीतिया को कहां चलता हो जाता जेत खम पे जाकर याने जेत खम के पे जिंदो गज का दियो और अब चलो कहां सहदेव के पास में याने के हीरे राजा सहदेव हां दे भाई तेने नू कही नितित्या लार गज का दियो तेने नू कही कि जग जो ना दियो जग जो ना दे दी अगर कोई बाकी हेरी हुए भाई और बता दे। राजा सहदेव ने कही के भाई मैं कहा बताऊं भेद बतावे भेद देखन दियो और या ने भेद खोलो भेद खोल के और या ने राजा जन बुलायो राजा जन हाँ अभी तो बहुत कसरे राजा जन बोलो के भाई तू अब कसरे मेट ले और कुछ हो जाए बता दे भर भर की रामायण मत राखे जो कुछ बात हो जाए तू एकदम बता दे। राजा सहदेव भेद देख के क्या राजा जनजोत को बताता है क्या कहता है

चलना है जावे युवक पतार सुहा अरा अर्जन तेरी जबी जब

कहता है राजा सहदेव कौन से राजा अर्जुन से राजा अर्जुन मैं तो या भेद की बात बताऊं अर्जुन जब जग पूरी हुए लोकनी चले जावे ये हित बनी शिकार मार के वाकु दावे और आ गए नागरत मसाण हे वासम तरना कुवर इमरत आवे लोक पताल तू अर्जुन तेरी जब जग पूरी हुई। ओ भाई राजा अर्जुन मैं आपको बात बताऊं ये वेद की बात है सेहत पली की शिकार पैसा लोक तू आएगी वासु तेरा सारा काम शुद्ध हो जाएगा चलो जा राजा अर्जुन ने कही के मैं ही जाऊं कोई सा और ले जाऊं सहदेव बोलो के यार ये सूत्रो भला कोई सा और ले जा तो जाए ना कौन राजा अर्जुन भीम के सामने क्या एक गुहा को पेश कर तो है क्या कहते हैं।

कौन कहता है राजा जन कौन थे भीम से? अरे भाई एक सूझ वो भला भीम मेरे साथ चल दे। भीम बोलो के यार भाई कोई सा है और ले जाके यार ये सब रोटी ना मैं सुबह ना रुके भाई तू ही चल नाटको के मैं ना चलू यार भूख को पिसाए परेशान हूं के ना भाई तू चल। तीसरा को कहनो राजा जन कदी भीम ने ना डोटो तो बकार भीम और राजा जन दोनों का दोनों कहां चलते हो जाते हैं पाताल। आगे आगे राजा अर्जुन पीछे पीछे भीम और ये पाताल लोक में पहुंचा।

0: श्रोताओं, अलवर के लोकगीत यहाँ की मिश्रित संस्कृति, प्रेम भक्ति और प्राकृतिक परिवेश को दर्शाते हैं। ये लोकगीत और लोक गाथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्थानीय जीवन शैली, आदर्शों और पीढ़ियों की मौखिक परंपरा के दस्तावेज हैं। अलवर के लोकगीत क्षेत्रीय पहचान और लोक जीवन का दर्पण है। ये गीत न केवल ऐतिहासिक चरित्रों और कथाओं को जीवंत रखे हुए हैं, बल्कि अलवर की पहचान को संगीत और मौखिक परंपरा के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अनूठी छाप देते हैं। आशा है कि आज का हमारा यह लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर के साथ आपकी हम सफर रही मैं अर्चना जैन। आलेख था डॉक्टर भीम सिंह जाट का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री शिव कुमार शर्मा एवं श्री नीरज भगत।
1: आपनो राजस्थान। अभी आप सुन रहे थे अलवर के लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम। अंशदान आकाशवाणी अलवर का था और इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मल्टी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: We categorically reject
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
2: Desist from making any comment on them.
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के

0: मुख्यमंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for class 12 board evaluations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commissions, S. Radha Johan. The committee will submit its report on the month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of class 12 students. Our constant reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. The Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the meat paper case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paperwork. The re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal. These after Nepal's Prime Minister Narendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Ludhiana Khan said, both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments.